ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, भद्रा माह की तिथि 8, तदनुसार 30 अगस्त ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और अनुराधा पौडवाल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में सुनवाते हैं ये पहली भक्ति रचना वाणी जयराम और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में ये भक्ति गीत, और इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में आनंद मोहन पाठक को। प्रातः 7 का समय होगा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार प्रातः 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक में। हो लोकगीत कलाकार बाबूराम सोए और साथियों की आवाजों में। प्रातः 9 समय होगा हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रातः 10 कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। दस बजकर 55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। 11:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी के रांची केंद्र से ही आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 आप सुनेंगे न्यूज इंडिया समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 3:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 5 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर समय होगा फौजी भाइयों को संबोधित कार्यक्रम जय भारती। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपने लिखा। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7 और उसके बाद जिले में आज कल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज रात्रि 9। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 हिंदी

समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज़ रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं आनंद मोहन पाठक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में आनंद मोहन पाठक को। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है उसने कहा था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत फिल्म उपकार से, और अब सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान का ये गाना, बोल सैयार के और संगीत खय्याम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विश्वास का ये गीत, आवाज़ मुकेश और हेमलता की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुनवाते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म ये रात फिर ना आएगी का ये गाना, संगीतकार ओपी नैयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का ये गीत, आवाज़ येसुदास और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में आप सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म द ट्रेन का ये गाना, बोल आनंद बख्शी के।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब सुनवाते हैं फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ मुकेश और साथियों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में फिल्म उजाला का ये गाना। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म तीन देवियां का ये गीत। गीतकार मजरू सुल्तान और संगीतकार एच डी बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म तीन देवियां का ये गाना। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं मुकेश के स्वर में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाय वासा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाय बासा, ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। समय है समाचार प्रभात का। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की

0: आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
1: एवरी नेशन हैज अ मिशन।
2: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा। केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश। रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन की मांग की है। पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने संताल में घुसपैठ का आरोप लगाया।
2: औसत जो वृद्धि है वो 24 है और मुस्लिम मतदाता की वो 40.9, 24 से 40 हो गया, लगभग 15-16% की वृद्धि। लेकिन वहीं पर अगर नॉन मुस्लिम, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी, उन वृद्धि दर देखते हैं तो 11.45 वर्ष दर्शाता है। इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से घुसपैठ हुआ है।
0: राजधानी रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रांची में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। नीट पीजी 2026 की परीक्षा देशभर के साथ ही आज रांची के 4 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक पाली में होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की तैनाती की है।

0: केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में दोगुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से साहिबगंज के चानन स्थित डॉल्फिन व्याख्या केंद्र में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर नचिकेत केलकर ने डॉल्फिन संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
2: झारखंड सरकार के अंदर निगरानी का क्षेत्र आता नदी का, वो कुछ 40 से 45 और अगर आप साइड चैनल भी गिनते हैं तो 60-65 किलोमीटर के दायरे में आता है। हमने ऐसा देखा है कि कभी कभार एक सर्वे अक्टूबर में होता है, उसमें मिलते हैं 60-70 डॉल्फिन।
0: बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राज्य भर में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में 61 और रांची में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, हजारीबाग, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दुमका जिले में अगस्त माह में कम बारिश होने से मयूराक्षी नदी पर बना दिगल पहाड़ी डैम अब पूरी तरह नहीं भर पाया है। जल स्तर कम होने से धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि आगे बारिश नहीं हुई तो सिंचाई के लिए डैम का पानी जरूरी होगा। प्रखंड के अन्य डैमों में भी पानी कम है। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में हॉकी और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा तथा देवघर में हॉकी प्रतियोगिताएं, मैत्रीपूर्ण मुकाबले और अन्य कार्यक्रम हुए। हॉकी झारखंड ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और जमीनी स्तर पर हॉकी को मजबूत करना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने नेपाल बाढ़ पर लिखा है, अलर्ट में एक घंटे की देरी वरना सैकड़ों जाने बच जातीं। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अब जिंदगी बचाने की जंग, नेपाल ने मांगी मदद, बचाव अभियान प्रभावित। हिन्दुस्तान ने झारखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर जारी अलर्ट की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट के सीआईडी जांच के आदेश की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करेंगे अपने विचार, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया। राजधानी रांची में आज 4 सेंटरों पर होगी नीट पीजी 2026 परीक्षा, केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से राज्य भर में हो रही है बारिश, रांची, हजारीबाग, दुमका समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर खेलेगा भारत जीतेगा भारत की थीम पर सिमडेगा, हजारीबाग, देवघर समेत कई जिलों में आयोजित की गई हॉकी प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये आकाशवाणी कचाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे हो लोकगीत कलाकार बाबू राम सोए और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी की महक में हो लोकगीत कलाकार बाबूराम सोए और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाबूराम दास और साथियों की आवाज़ों में ये हो लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको विविध रंगी जानकारियां देते हैं। श्रोताओं, आज हम आपसे बातें करेंगे मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। श्रोताओं, यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने के लिए एक प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है, जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप भी पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। श्रोताओं, अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700484 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, बातों को यहीं विराम देते हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धारा आम बोले रुआ तबन में अल परिवार से मतलब पूरे ये
3: मंगल गाँव आड़की थाना तो जंगल गया है तो कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए है
5: तुम लोग बुरंग सिंह तमसा है अनुता तमसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
6: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में लूड़ी ने बागिया तो कि ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चला होता ना दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेकर ना लेंगे सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेकर ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं भेंट वार्ता। आज का विषय है बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं कमलेश्वरी दास और उनसे बातें कर रही हैं राधा रानी।
9: बहनों आज हम अपने स्टूडियो में सौंदर्य विशेषज्ञ श्रीमती कमलेश्वरी दास को आमंत्रित किए हैं। इनसे हम बातें करेंगे बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखरेख कैसे करें। तो कमलेश्वरी जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
10: नमस्कार।
9: सबसे पहले हम त्वचा से लेते हैं तो त्वचा विशेष करके चेहरे की देखरेख कमलेश्वरी जी हम किस तरह से करें।
10: चेहरे की देखरेख के लिए बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए कि बारिश में कोई उतना ज़्यादा चेहरा का देखभाल नहीं करने के कारण चेहरा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे आप ग्रामीण महिलाओं के लिए आप घर में जैसा खीरा दही ये सब तो घर में सभी के घरों में मिल ही जाता है तो आप खीरे को कद्दूकस करके दही में मिला के आप चेहरे में लगा सकती है। और दूसरा
9: इसे लगाकर हम कितना देर तक रखें इसे लगा कर?
10: इसे लगा के आप 15 मिनट रखिए उसके बाद आप साफ कर दीजिए।
9: साफ पानी से धो लेना।
10: हाँ,
9: है
10: साफ पानी से धो लीजिए।
9: अच्छा अच्छा।
10: और जैसे दूसरा आप पिस्ता बादाम को पीस करके आप फेस पे लगाइए, उसको भी 10-15 मिनट रखिए, उस वो भी आपका घरेलू मतलब मिल ही जाएगा बादाम। और फिर जैसे जौ का आटा, संतरे का छिलका, ये नींबू के साथ मिला के आप लगा सकती है। इस तरह से आप मतलब अपने बारिश के दिनों में ऑयली जो फेस हो जाता है
11: तैलीय त्वचा के लिए, हाँ
10: हाँ, उसमें आप ये चीज लगाइएगा तो आपका मतलब ऑयलीपन कम हो जाएगा,
11: तैलीयपन जो है थोड़ा बहुत कम हो,
10: ऑयलीपन कम हो जाएगा और माने चेहरा भी साफ रहेगा। और कोई माने बाहर का जैसे क्रीम हुआ, ये तो बारिश के दिनों में बिल्कुल ही मतलब
11: नहीं लगाना है।
10: अच्छा, लगाना चाहिए लेकिन नहीं भी लगाने से चलेगा क्योंकि इतना ऑयल हो जाता है कि क्रीम का जरूरत ही नहीं पड़ता।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ऑयली त्वचा के लिए, तो हम रूखा जो त्वचा होता है उसके लिए हम किस तरह से देख रेख करेंगे?
10: रूखा त्वचा जैसे बहुत ज्यादा ऑयली हो जाने के कारण माने आपका ये फेस मतलब पूरा ये हो जाता है, तो रूखा जैसे स्क्रब कर सकते हैं आप, स्क्रब जैसे घर पे भी बना सकते हैं या तो फिर बाजार से खरीद के अपना यूज कर सकते हैं। घर पे बनाने के लिए जैसे संतरा का छिलका हुआ, उसके बाद जौ का आटा, ये सब मिला के आप स्क्रब के रूप में आप यूज कर सकते हैं।
11: अच्छा।
10: तो उससे क्या होता है आपका माने पूरा ये हो जाएगा।
11: अच्छा, जौ के आटा के साथ हम क्या मिक्स करें?
10: जौ के आटा के साथ आप संतरे का छिलका, जौ का आटा और ऐसे पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास गुलाब जल हो तो वो भी चलेगा,
11: उसके साथ मिक्स करके पेस्ट जस्ट आप कहेंगे बना करके चेहरे में लगाना है। हाँ, उसे भी 10-15 मिनट लगा के,
10: हाँ 10-15 मिनट फेस में मतलब उसको ये करना है जैसे साबुन लगाते हैं उस तरह से लगा के आप छोड़ दीजिए,
11: छोड़ देना। अच्छा,
10: उसके बाद फेस को धो लीजिए
11: साफ पानी से। अच्छा, ऐसा है जौ की आटा, यानी आटा तो बहनों को, ग्रामीण बहनों को मिल ही जाएगा, और जहाँ तक संतरे की बात हो, यदि संतरा ना मिले तो उसके जगह कोई दूसरा चीज क्या इस्तेमाल में लाया जा सकता है?
10: संतरा, अगर संतरा का छिलका अगर नहीं मिलता है तो जौ का आटा केवल चल जाएगा, उसमें पानी मिला लीजिए या फिर जैसे दूध, अगर किसी के यहाँ दूध नहीं है तो फिर आप पानी से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध और गुलाब जल से ज्यादा मतलब अच्छा होता
11: रहता है। यानी आप कहेंगे कि जो जौ का जो आटा है वो फायदेमंद है, उसे यदि हम पानी के साथ, यदि गुलाब जल और दूध नहीं रहा, संतरे का छिलका नहीं रहा, तो हम ये आटा भी हमारे लिए उपयोगी है, इससे भी हम त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं।
10: साफ कर सकते हैं।
11: अच्छा, वैसे और क्या बताएंगे, और किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कौन कौन सा चीज?
10: जैसे आपका अभी अनानास हुआ, अभी बारिश के दिनों में अनानास बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो अनानास के माने अनानास को कद्दूकस करके आप उसको भी लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं।
11: अच्छा,
10: बहुत
11: अच्छा।
10: सारा चीज,
11: हाँ, पपीता तो देखिए गांव घर में मिल जाता है ना, हाँ। तो पपीता को हम किस तरह से चेहरे में लगाएं?
10: पपीता को, पपीता के छिलके को निकाल दीजिए, पपीता जो अंदर में रहेगा
11: क्या कच्चा हुआ ना, पका?
10: नहीं, पका हुआ पपीता। पका पपीता को आप उसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए, मतलब हल्का सा पीस लीजिए या फिर कोई ये में हल्का छोटा छोटा,
11: यानी आप कहेंगे कि वो पका जो ना अधिक पका हो, हाँ, ना ही कच्चा, हाँ, हो, जो मध्यम, हाँ, स्थिति में हो। अच्छा,
10: उसको आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत मतलब फायदा करता है पपीता,
11: उसका रस को,
10: हाँ, रस लगाइए।
11: अच्छा,
10: फिर जैसे खीरा, ये सब तो प्रायः मिल ही जाता है सबके यहाँ, फिर गांव में तो सब मिल, प्रायः मिलता है
11: खीरा तो मिल ही जाता है।
10: ये सब सारा चीज आप लगा सकते हैं घर
11: इन दिनों, बरसात के दिनों में, इन सब चीजों से बहने अपनी त्वचा को साफ रख सकती हैं। अच्छा, देखेंगे बरसात के दिनों में पिंपल्स जो है मुहासे, जिसको हम कहेंगे, बहुत ज्यादा निकल आते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें?
10: जैसे अभी वॉयल जो हो जाता है, वॉयल के कारण माने मुहासा ज्यादा होता है, तो ये सब जो हम जितना अभी पहले आपको बताएं, ये सब चीज आप यूज करिए, आपको माने उससे ऑयलीपन जो दूर होगा, ऑयलीपन जहाँ नहीं हुआ तो मुहासा भी नहीं होगा,
11: खत्म
10: हो जाएगा मुहासा। अगर ऑयल हो जाएगा फेस तो मुहासा होना है
11: जरूरी
10: हो जाता है।
11: तो यानी आप कहना चाहेंगे कि त्वचा को हमेशा साफ रखें,
10: और हाँ, जिसका मतलब जैसे ऑयली ज्यादा हो जाता है उसको हमेशा 10-15 मिनट में चेहरा अपना धोना चाहिए,
11: धोना जरूरी हो जाए, ठंडे, हाँ, साफ और ठंडे पानी से, हाँ, चेहरे को साफ करते, हाँ, रहे। अच्छा, ये तो रही त्वचा की बातें, अब देखेंगे इस मौसम में बालों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है ना, आप रूसी जो है वो भी हो जाता है और बाल भी काफी झड़ने लगता है, तो इस क्या कहेंगे आप, उसकी देख रेख हम कैसे करें?
10: ये बारिश के मौसम में प्रायः सभी व्यक्ति के बाल गिरते हैं, ये तो बारिश में हमेशा हर व्यक्ति का होता ही है, लेकिन बारिश में कारण यही है कि मन बारिश में आदमी भींग जाता है, बाल में रूसी हो जाता है, ये सब कारण जैसे भींगता है आदमी तो वो बाल ठीक से सूखता नहीं है, सूखा नहीं पाता है। फिर आपका जैसे सफाई करना चाहिए, जैसे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वो सफाई नहीं हो पाता है, बाल हमेशा भीगते रहता है बारिश में, कारण है रूसी, इसी हो जाता है, रूसी उसी से हो जाता है, प्लस जो बाल नहीं सूखता उससे गंदगी हो जाता है तो बाल ज्यादा झड़ता है।
11: यानी आप कहेंगे सप्ताह में तब हमें कितने बार,
10: कम सप्ताह में 2 दिन बाल एकदम जरूरी है,
11: जरूरी हो जाता है
10: एकदम जरूरी। और जैसे इस मौसम में बाल तो बहुत कम ही लोग मतलब धोते हैं,
11: धोते हैं हाँ। लेकिन सलाह देंगी आप कि 2 बार जरूर से जरूर सप्ताह में
10: धोना चाहिए,
11: धोएं। अच्छा, और उसके बाद सुखाए जरूर,
10: हाँ धोने के बाद उसको सुखाए जरूर,
11: ऐसे भींगा ना छोड़ दे।
10: अगर भीगा रहेगा तो वो आपका बाल झड़ेगा, प्लस रूसी होगी, गंदगी हो जाएगी, ये सब होना जरूरी है। इसीलिए बाल अभी के मौसम में बाल को अगर धोते भी है तो सुखाइए, और ये तो फिर बारिश में भींगते हैं तो भी सुखाइए।
11: अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहने हैं जो क्या कहेंगे चिपचिपापन के कारण तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तेल लगाना ऐसे तो जरूरी है ही, लेकिन आप एक सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे?
10: तेल तो एकदम जरूरी है लगाना, क्योंकि आप अगर तेल नहीं लगाती हैं तो आपका जो मैंने जड़े जो है वो एकदम बिना तेल का मजबूती खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो आपका झड़ने लगता है। बाल में तेल मैंने आप दिन में आप धो दीजिए, लेकिन आप तेल लगा के 1 घंटा जरूर रखिए। अच्छा, कोई भी टाइम,
11: अच्छा
10: 1 घंटा आप रखिए तो सबसे अच्छा होगा। जो महिलाएं पसंद नहीं करती है तेल लगाना, तो रात में लगा के 1 घंटा रख के सुबह धो सकती है।
11: यानी रात को लगाएं, सुबह जैसे नहाती हैं,
10: माने तेल आप लगाएंगे तो 1 घंटा आपको रखना है, उसके बाद तेल का कोई काम नहीं आता, वो सिर्फ चिपचिपापन ही देता है। अच्छा, बालों अच्छा। में
11: यानी धोने से पहले आप तेल को जरूर से लगाएं
10: तेल, और अच्छा बाल में जरूरी नहीं है लेकिन जड़ में एकदम अच्छे से मसाज कीजिए। और बारिश के दिनों में या फिर कोई भी दिन में, बारिश में तो जरूरी है लेकिन कोई भी दिन, आप बाल में तेल लगाने के बाद स्टीम जरूर दीजिए। अच्छा? क्योंकि देखिए रोम छिद्र जो आपका बाल जो बंद हो जाता है रोम छिद्र, उससे क्या होता है रूसी उसी हो जाता है, रूसी से पूरा बंद कर देता है रोम छिद्र, तो बाल जो झड़ता है वो निकलता नहीं है दोबारा। अगर आप स्टीम लीजिएगा तो उससे क्या होता है रोम छिद्र खुल जाएगा, तो रोम छिद्र खुलने के बाद मैंने आपका जड़ जो है वो भी मजबूत रहेगा, रोम छिद्र खुलेगा तो आपका बाल निकलेगा, ये सब होता।
11: तो ये स्टीम किस तरह से बहने ले?
10: स्टीम जैसे आप मशीनें भी आती है तो खैर मशीन की तो बातें
11: उपलब्ध नहीं हो पाएगा,
10: तो जैसे ग्रामीण महिलाएं या फिर कोई भी, आप कोई टॉवल गर्म पानी करके टॉवल को भिगा लीजिए, उसके बाद आप टॉवल पूरा सर पे लपेट लीजिए, 10 मिनट रखिए, फिर दोबारा इसी तरह से आप कम से कम 2-3 बार आप 4 बार लीजिए।
11: अच्छा, भाप लेने से भी तो होगा?
10: हाँ, भाप भी ले सकते हैं,
11: जैसे मान लीजिए हम उबलता पानी खोल रहा है पानी, हम दूर से ही इस तरह से भाप ले रहे हैं,
10: ले सकते
11: सर को झुका के,
10: तो उसमें
11: सावधानी पूर्वक,
10: उसमें क्या है उतना आरामदायक आपको नहीं लगेगा। अच्छा, जितना अच्छा, आप मैंने कोई
11: एक तौलिया से हम मोटा कपड़ा से जिसको आप बोलेंगे, अच्छा
10: उससे अच्छे से गर्म पानी में उसको भिगा के आप 10 मिनट लीजिए, फिर उसको डुबाइए, फिर लीजिए इस तरह से 4 बार लीजिए, उसके बाद आप छोड़
11: दीजिए। अच्छा, गर्म खौलता पानी में अच्छी तरह से टॉवल को भिंगो लेना है, हल्का निचोड़ लेना है, और बालों में अच्छी तरह से उसे लपेट लेना है। ऐसा देखना है ये कि पूरा आपका जड़ों तक उसका जो भाप है वो आए,
10: जड़ तक जाना चाहिए।
11: अच्छा, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, आगे और क्या बता रही हैं आप?
10: जैसे अभी अभी के मौसम में बस वही स्टीम ये सब ले सकते हैं, फिर आपको दही अंडा ये सब भी लगा सकती है, लेकिन अभी के मौसम में ये सब लगाइएगा तो मैंने अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको पूरा सावधानी पूर्वक और ध्यान देके, जैसे दही अंडा लगा लिए आप बाल ठीक से नहीं धोएंगे तो बाल
11: महकेगा,
10: महकेगा, प्लस आपका मैंने ये सब जो जम जाएगा उससे भी रूसी होने का संभावना
11: अच्छा,
10: है
11: अच्छा, अच्छा।
10: तो लगाइए, लेकिन इतना मतलब सफाई से कीजिए कि मतलब आपका खराबी ना करे।
11: अच्छा, सावधानी पूर्वक काम को करना है। अच्छा।
10: आप मेहंदी लगा सकती हैं।
11: अच्छा,
10: मेहंदी
11: लगाइएगा।
10: हाँ, मेहंदी आप हर मौसम में लगा सकती हैं। अच्छा, मेहंदी अच्छा, हाँ। मेहंदी कभी खराबी नहीं करता है। आप अपना जैसे हम शहर के लोगों के लिए तो पैकेट में मेहंदी बना बनाया आता है वो लेके लगा लेंगे, लेकिन देहात जैसे गाँव के लोग वो अच्छी तरह से पत्ते को पीस के लगाइए, पत्ते को पीस के लगाइएगा तो ज्यादा फायदा करेगा।
11: पत्ता को अच्छे से धो के उसको पीस लेना के? तो उसमें कुछ मिक्स भी करना, क्योंकि कुछ, कुछ ऐसा भी होता है ठंडा भी किसी किसी को लग जाता है, तो उस किस तरह से हम इस्तेमाल,
10: जैसे आप जिसको जैसे ठंडा लग जाता है तो जल्दी, मतलब जैसे 5-10 मिनट अपना रखा और निकाल दिया।
11: अच्छा।
10: और ज्यादा देर ऐसे तो आप मेहंदी लगा के कम से कम 1-1.5 घंटा रखना चाहिए।
11: तो आपका बाल लाल नहीं हो जाएगा?
10: बाल लाल करने के लिए और भी काफी समय की जरूरत होती
11: है,
10: 4 घंटे की। और जिसको मतलब सिर्फ अपना बाल को मतलब
11: चमक लाना
10: है तो वो 1-1.5 घंटा रख के निकाल दे। और जिसको रेड करना है तो वो आपका 4 घंटा।
11: तो उसके अंदर हम क्या दे, सिर्फ मेहंदी ही डाले या और कुछ डाले?
10: आप जैसे केवल मेहंदी को भी यूज कर सकते हैं, और जैसे किसी को बहुत ज्यादा डार्क चाहिए रेड तो वो कॉफी मिला सकते हैं, चाय पत्ती के पानी में घोल के लगा सकते हैं, रात को उसको अच्छी तरह से भिगा लेना।
11: तो हम यदि काला करना चाहें तो?
10: काला करना चाहेंगे तो आप लोहा का कढ़ाई में कीजिएगा।
11: अच्छा,
10: लोहे की कढ़ाई में। ऐसे आपकी बाल जो है, जो व्हाइट बाल है वही रेड करेगा।
11: हाँ, वो तो रेड करेगा ही, लेकिन है ना कोई रेड पसंद नहीं करता है, थोड़ा सा चाहता है कि कालापन उसमें आए।
10: लोहे की कढ़ाई में आप कीजिए, उससे आपका बाल मतलब रेड नहीं करेगा। जैसे उसमें आंवला रीठा ये मिला के अब मेहंदी को घोल बना के आप रात में भिगा के दूसरे दिन आप लगा सकते हैं।
11: अच्छा, तो कितना मात्रा में क्या लेना है? जैसे हम लिए एक सर के लिए हम कितना मेहंदी लेंगे, कितना रीठा लेंगे?
10: आप जैसे एक सर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मेहंदी, छोटे बाल के लिए 50 ग्राम मेहंदी, उसमें आप ज्यादा नहीं आंवला रीठा ये सब आप माने 4-4 पीस करके आप मिला लीजिए।
11: चूर्ण जो आता है
10: वो हाफ, मैंने सोचिए 50 का 25।
11: अच्छा, हाफ हाफ करके हमको सब लेना, आधा आधा हिस्सा में। अच्छा,
10: जैसे 50 ग्राम मेहंदी है तो 25 ग्राम आप वो मिला दीजिए,
11: रीठा हो या आंवला हो, मिक्स करके रख देना है लोहे की कढ़ाई में। उसके बाद दूसरे दिन उसे लगा करके 1 घंटा चाहे जितना देर आप चाहती हैं लगा के रखें, और साफ पानी से फिर धो लें।
10: पानी से धो लीजिए
11: और धोएं तो जरूर से जरूर उसे सुखाएं।
10: बाल एकदम सुखाना है।
11: कुछ खास बातें बताना चाहेंगी बहनों को?
10: हाँ जरूर बताएं।
11: क्या बताना चाहते हैं बताएं?
10: जैसे बाल अभी बहुत ज्यादा मतलब ये व्हाइट हो रहा है, जैसे व्हाइट हो जाता है, किसी का बाल बहुत झड़ता है, ये सब चीजें जैसे है तो जैसे बहुत कोई होता है कि उतना ध्यान नहीं देता है, तो जैसे बाल के लिए एक मतलब जैसे जैतून का तेल आता है, ये तेल बहुत ज्यादा ही मतलब ये बहुत मैंने किसी को पता रहता है किसी को नहीं रहता है। जैतून का तेल आप थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए और मैंने सर में मालिश कीजिए रात में डेली, आपको कोई भी तेल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उसको लगाइए, अब देखिए बाल एकदम झड़ना रुक जाएगा आपका।
11: अच्छा अच्छा।
10: फिर जैसे नींबू सरसों तेल हुआ, इसको आप लगाइए बाल में और 1 घंटा रखिए, उससे भी बाल आपका झड़ना रुकेगा। ये सब चीज
11: है, कंडीशनर का भी काम करेगा।
10: हाँ, ये सब करेगा।
11: बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं कमलेश्वरी जी जो सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखरेख के विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, आप यदि कुछ जानना चाहती हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमें खत लिखिएगा। तो कमलेश्वर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
10: नमस्कार।
12: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था बरसात के दिनों में त्वचा और बालों की देखभाल। जानकारी दे रहे थे कमलेश्वरी दास और उनसे बातें कर रही थी राधा रानी। और इसी भेंट वार्ता के साथ ही आज का कार्यक्रम विविधा से अब विदा लेने का समय हो गया है। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुनवाते हैं ये पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है तेरे नाम, गीतकार समीर।

और अब सुनवाते हैं आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा की आवाज़ों में फिल्म थानेदार का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार बप्पी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म थानेदार का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा की। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म टूटे खिलौने का ये गीत, येसुदास के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टूटे खिलौने का ये गीत, आवाज़ येसुदास की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1 4

0: 9899 या 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम रस रंजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत, आवाज उदित नारायण और अनुराधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म त्रिदेव का ये गाना। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रस रंजन अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत यशुदास के स्वर में। फिल्म है सावन को आने दो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की। और अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म ससुराल का ये गाना। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में फिल्म पापा कहते हैं का ये गाना। संगीतकार राजेश रोशन।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं फिल्म शोले का ये गीत, मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म शोले का ये गीत मन्ना डे और किशोर कुमार के स्वरों में। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। सूत्रधार थे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहारा जी, कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रचना।
1: और मैं हूँ रितेश।
0: आप सभी को हमारा
1: जोहार,
0: नमस्कार।
1: और साथ में जोहार भी
0: जी। आपको भी जोहार।
1: आपको भी जोहार। रचना जी, कैसी हैं आप?
0: बस बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज जो है अंतिम रविवार है, तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, इसकी अवधि थोड़ी कम है, यानी कि आधे घंटे की। क्योंकि अंतिम रविवार को जो है 10:30 बजे से, मतलब 11 बजे
1: से, 11 बजे से प्रधानमंत्री
0: अपने मन की बात
1: साझा देशवासियों को संबोधित करते हैं।
0: बिल्कुल
1: है।
0: तो बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विचार की, क्योंकि शुद्ध विचार होने ही चाहिए, तभी आपका दिन भी अच्छा होता है।
1: हाँ, यानी आपके पास कुछ सुविचार के लिए, हमारे साथियों के लिए कुछ बात है, आप बताएं।
0: मन की पवित्रता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बुरे विचार और बुरी संगति मन की शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसलिए उन्हें ही मन में स्थान दो, जिससे आपको प्रेम, सकारात्मकता और सुकून मिले।
1: यानी अच्छी बातों, अच्छे कार्य से अगर दिन की शुरुआत हो जाए तो फिर सारा दिन शुभ शुभ होता है ना।
0: तो हम भी एक अच्छे गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत।
1: बिल्कुल।
0: करते हैं।

0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था ये। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ स्वास्थ्य की भी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं रितेश जी, कि अभी जो है झारखंड में भी स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
1: देश के और भी अन्य हिस्सों
0: हाँ
1: भूभागों में भी स्वाइन फ्लू का कहर चल रहा है, बट रांची में भी इसकी दस्तक आ
0: आ
1: गई
0: गई
1: है ना।
0: है।
1: सदर अस्पताल, रिम्स वगैरह में कुछ कुछ मरीज नोटेड किए गए हैं। आपके पास कुछ जानकारी है
0: हाँ,
1: क्या?
0: तो झारखंड में स्वाइन फ्लू की संभावित स्थिति को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग जो है सतर्क कर रहा है, और राज्य भर में स्थिति की समीक्षा के बाद सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और सभी को जो है सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और समय पर पहचान, जांच, उपचार, निगरानी और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेफर की व्यवस्था भी मजबूत करने को कहा गया है। और साथ ही सभी जिलों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले मरीजों तथा गंभीर श्वसन यानी सांस के संबंधित जो संक्रमण के मामले हैं उनकी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रभावी बनाने का आदेश भी दिया गया है, और अधिकारियों को संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की हिदायत दी गई है।

0: जिलों के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक है ना, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है ना। खबर के अनुसार फरवरी 2026 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 18 जिलों में पानी में नाइट्रेट की मात्रा सामान्य से अधिक मिली है, जो कि चिंताजनक विषय है ना। 381 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 66 नमूनों में 17.32% नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर की निर्धारित मात्रा से अधिक मिली है, यानी ये चिंताजनक विषय है। और बता दें आपको 18 जो प्रभावित जिलों की के बारे में बताया गया वो है रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, साहिबगंज और सिमडेगा। यानी यहाँ पर और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। पानी के बारे में कहा गया है ना कि अगर आप इसको गर्म कर छान कर पिए तो शायद ये दुष्प्रभाव को कम करता है।
1: यानी पानी को आप उबाल लें तो जो है वो थोड़ी सी हाँ हो जाता है।
0: और एक बात और, जितना हम आरओ का उपयोग कर रहे हैं रचना, ये मुझे लगता है कि जिस दशकों में आरओ का जो उपयोग बढ़ा है ये भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल रहा है।
1: हाँ, क्योंकि उससे ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोग क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि आरओ का पानी आपके अंदर जाता है तो आप जो है बाहर का पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते, बाहर का खाना भी जल्दी नहीं।
0: और आरओ पानी में क्या, एक मुझे लगता है कि ये सब चीजें अध्ययन की बात है, बट मुझे जो बताया गया, मैं जो जानकारी हासिल कर पाया हूं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, जो नेचुरल जो पानी का स्वाद होता है उसको वो शायद कुछ
1: हद तक वो नष्ट हो जाता है।
0: और मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता भी शायद कम होती है ना। पहले के जमाने में हम लोग कोई भी वाटर पी लेते थे तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, बट आज के समय में ये तो कल्पना से भी बाहर है कि हम कोई नॉर्मल वाटर पी सके, बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। अदरवाइज हमें याद है रचना, जब हम लोग ट्रेन वगैरह में सफर करते थे अपने कॉलेज के दिनों में, तो वो जो स्टेशन में वो जो बिल्कुल नलका का पानी होता है उसमें हम लोग दौड़ के जाके पानी बोतल भर के वो पीते थे और कुछ नहीं होता था। बट समय ने परिवर्तन लिया है और बहुत सी कुछ चीजें उस स्तर की नहीं रही, यानी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, चाहे वो वायु हो, ध्वनि हो, जल हो, सबका प्रदूषण स्तर बढ़ा है ना। तो एहतियात बरतने की जरूरत है भी, पर थोड़ा बहुत अपने आप को, थोड़ा अपने शरीर की क्या कहते हैं स्ट्रांग भी, इम्यून को स्ट्रांग करने की भी जरूरत है। एकदम बिल्कुल डॉल टाइप से नहीं रहना है ना, थोड़ा सा धूप भी लगाना है, थोड़ा हवा भी लगाना है। अपने बच्चों को तो सिखाना चाहिए ये मौसम से लड़े, थोड़ा सा संघर्ष करें, थोड़ा शरीर को तपाएं, ताकि आपकी मजबूती बरकरार रहे। क्यों रचना?
1: बिल्कुल, बातें तो बहुत हो गई, अब सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: जी रितेश जी तो
1: बहुत ही खूबसूरत आपने गाने सुनवाए पानी को लेकर, पानी की बात
0: पानी की बात हम
1: कहते हैं ना, जल बिन सब सुन, वाकई जल बिन जब सब सुन, और अगर जल चाहे तो प्रलय प्रवाह अभी हम अपने पड़ोसी देश में देख रहे हैं, और साथ ही उसका असर हमारे भारतवर्ष में भी ना बड़ा ही मर्माहत है ना, ये सब चीजें जो दिख रही है ये
0: तो जल से ही रिलेटेड। अब बात करते हैं मौसम की ही, और वैसे ही कहा गया है कि रांची में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है।
1: अरे अरे अरे,
0: तो राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले चार दिनों तक अच्छी बारिश के आसार हैं, और इन चार दिनों के दौरान 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और कुछ जगह वज्रपात भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से, बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित है। इस सिस्टम के अगले 48 घंटे में और व्यापक होकर झारखंड से होकर गुजरने की आशंका है, और इससे राज्य के हर हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है।
1: आपने एक तो बातें बताई बारिश होगी, पर साथ में आपने ये भी कहा ना कि वज्रपात की संभावना है, तो ऐसे में हमारे किसान पालक, किसान जो हमारे कृषक हैं, जो चरवाहे हैं, वो सब जो बाहर खेत पर जाकर अपने पशुओं को चराते हैं, खेती करते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है ना। कभी भी जब बिजली कड़कती है तो फिर कोई वृक्ष का सहारा नहीं ले है ना, किसी पोल खंभे में सटकर खड़े नहीं रहे, बिजली के तार से दूर रहे, और ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर कोई अर्थ कंडक्टर का मतलब जहां पे अर्थ कोई खींचने वाला पदार्थ नहीं हो, यानी कोई नुकीले पदार्थ की चीजों के सामने खड़े नहीं रहे। ऐसे में छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में जहन में रखकर अपना बचाव किया जा सकता है ना?
0: हाँ, तो यानी कि जो उससे होता है ना कि बिजली गरजती है तो उसके चपेटे में आप ना आए, अपनी सुरक्षित जगह पर रहें। तो देखिए मौसम के बारे में कहा तो गया है कि
1: चलिए बारिश अच्छी हो रही है तो चलिए ठीक है। एक तो अच्छी बात है कि हमारे जो किसान भाई लोग जो अपने खेत में जो अच्छी धान की फसल लगा चुके हैं उनके फसल अच्छे लहलहा रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही पर जहां पर जल जमाव हो रहा है वहां पर कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है रचना, है ना, जैसे स्वास्थ्य संबंधी फिर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जहां पर जल जमाव होता है वहां पर कुछ कुछ मच्छर है ना, मच्छर जनित बीमारी, मलेरिया आदि, टाइफाइड आदि की के बारे में सूचना मिलती है, और शायद वहां पर ये संभावना ज्यादा रहती है कि वैसे जगह पर वो कीटाणु मच्छर का प्रकोप ज्यादा होता है, तो ऐसे जगहों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छे से,
1: यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ?
0: देखिए पानी तो
1: डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है ना,
0: वो तो बरसात के समय हर जगह छिड़काव होना ही चाहिए उनका, और अपने घरों में भी हमको करना चाहिए, घरों में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर आपके घर के आसपास नाली है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर नियमित रूप से डालें, नाली की सफाई करें, और शायद अगर एक आध बूंद कहीं कहीं आप केरोसिन तेल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है रचना कि मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो नहीं पनपते हैं, अगर वो नहीं पनपेंगे तो फिर मच्छरों की संख्या कम रहेगी। यानी इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखकर, अपने प्रयास करकर हम ऐसी बीमारियों को रोक सकते हैं, और
0: काफी हद तक अपना बचाव हम कर
1: सकते हैं रचना।
0: और जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो बच्चों को जब आप बाहर निकालते हैं मच्छर जहाँ है तो आप उनको पूरी वहाँ के कपड़े जरूर,
1: हाँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपने बताई, फुल शर्ट यानी पूरे
0: ढके हुए होने चाहिए। अगर वो खेलने बाहर जा भी रहे हैं तो या तो उनको बहुत ज्यादा ग्रीनरी जो रहता है ना वहाँ ना भेजे, और भेजे भी तो क्रीम लगाकर भेजे, कपड़े फुल भाके लगाकर भेजें।
1: हाँ, और बरसात के मौसम में तो हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा बचाव रखे है ना, भीगने की आवश्यकता नहीं है, और अगर बच्चे भीग जाते हैं तुरंत उनके सर्द कपड़ों को बदलें, और आपके बच्चे अगर स्कूल या विद्यालय या फिर कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो रेनकोट या फिर छाता का इस्तेमाल जरूर करें, और अगर भीग जाते हैं तो तुरंत कहते हैं ना गर्म पानी का सेवन करें, नींबू पानी पिए और गर्म दूध में हल्दी डालकर पिए, है ना,
0: वो तो सबसे अच्छी। हल्दी तो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, एंटीबायोटिक है, तो आपके शरीर को गर्म भी रखती है, आपके चोटों को जल्दी भरती है, तो आयुर्वेदिक तरीके से भी देखा जाए तो हल्दी बहुत ही अच्छी।
1: हाँ, यानी अगर हल्का फुल्का कभी देखते हैं, हल्की से कभी टेम्परेचर आपको कभी फील होता हो कि मैं भींग के आई हूँ, मेरे पैर भींगे, मेरे सॉक्स भींगे, तो कहीं टेम्परेचर आ गया तो तुरंत हम अंग्रेजी दवाई खाने के चक्कर में रहते हैं, ऐसा मुझे
0: नहीं
1: लगता है कि
0: नहीं
1: थोड़ा सा वेट करना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: थोड़ा
1: है ना, थोड़ा
0: वेट
1: वेट
0: करना
1: करें,
0: चाहिए।
1: थोड़ा गर्म पानी का सेवन करें, ये जो आपने बताया हल्दी दूध ये सब करें, और थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा सा गर्माहट करें, थोड़ा गर्म तेल का उपयोग करें, तो शायद एक दो दिनों में ये सब चीजें चली जाती हैं ना, एंटीबायोटिक्स का
0: मतलब
1: उपयोग।
0: तुरंत हमको दवा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए जल्दी।
1: हाँ बिल्कुल, और तो मेरा तो अनुभव, हम लोग तो इस उम्र के इस पड़ाव में जहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है, तो शायद दो तीन दिन अगर हम परहेज से रह लेते हैं, थोड़ा भोजन में परहेज, थोड़ा व्रत ये सब फास्टिंग में कर लेते हैं, तो बापू ने कहा था ना कि बापू जब बीमार होते थे तो वो बिल्कुल वो फास्टिंग कर लेते थे, तो शायद अभी उनको लगता था कि वो धर्म वाली चीजें थी, बट आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं तो कहते हैं ये सबसे अच्छी प्रक्रिया शरीर को रेस्ट देने का, और अगर शरीर के सिस्टम को अगर आप रेस्ट दोगे सप्ताह में एक दिन, तो कहते हैं वैसे भी आप क्या करो, बिना पानी बिना खाए रह जाओ, फ्रूट्स पे रह जाओ, पानी पे रह जाओ, तो शायद आपको ये सब रोग बहुत ही कम होगा, है ना, क्यों?
0: बातें हमारी बहुत हो रही है, लेकिन एक कुछ जानकारी है वो दे दें अपने श्रोताओं कि आज जो 30 अगस्त है, तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, और ये दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है, और आजकल तो लघु उद्योग बहुत सारे हैं, इसके लिए काफी सरकार मदद भी करती है, लोन भी देती है, आप कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग
1: अभी आप एमएसएमई का एक नया मंत्रालय ही चल रहा है ना रचना, तो सरकार के द्वारा बहुत महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारे एसजी ग्रुप्स को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारे जो छोटे बच्चे, जो नए बच्चे जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है,
0: कुछ
1: वो स्टार्टअप स्टैंडअप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का तो ये बहुत ही स्पष्ट सोच है कि देश, युवा देश जो हमारा है वो कुछ करे, नौकरी देने, नौकरी देने वाले बनो।
0: हाँ बिल्कुल, अगर
1: आप क्या कहती हैं इस मामले में?
0: बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई उद्योग शुरू करते हैं तो आपके साथ आप 10 लोगों को जोड़ते हैं, यानी कि 10 लोगों का चूल्हा आपके बदौलत चल रहा है,
1: एकदम
0: तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बशर्ते की नौकरी करने जाते हैं, उससे अगर आप अपना लघु उद्योग कोई शुरू कर सकते हैं तो आप जो है दूसरों की
1: स्वयं के साथ, स्वयं की प्रगति के साथ आप समाज राष्ट्र की प्रगति में बहुत अहम योगदान देंगे।
0: बिल्कुल,
1: ये ऐसी सोच बहुत ही अच्छी सोच है, और हमारा देश शायद विगत वर्षों में बहुत आगे बढ़ा है, तकनीक के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जो हम धीरे धीरे क्रमशः प्रगति कर रहे हैं ये उल्लेखनीय कह सकते हैं, है ना,
0: तो इसीलिए लघु उद्योग में को बढ़ावा दें और मिलकर साथ मिलकर काम करें।
1: हाँ जी, हाँ जी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना.
2: इतनी भी क्या जल्दी थी.
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना.
3: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम.
4: पर दादी आपके नाम.
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है. कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो.
1: शुभ शुभ बोलो.
2: क्या
6: आरबीआई कहता है.
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए.
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं. मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. याद रखें समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं. मदद बस एक कॉल दूर है.
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे. तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात.
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार. मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं. आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं. इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है. साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा. उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है. आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें. यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था. मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा. मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए. मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है. मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com. उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए. साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं. कृष्णा जी नमस्ते.
10: नमस्ते सर. नमस्ते
9: भाई. मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली. तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ.
10: सर धन्यवाद. सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था. फिर मैंने MBA किया. फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया. लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं. हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
9: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए.
10: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है. इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे जो महान साम्राज्य थे जैसे चोलास थे पल्लवास थे करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में अहोम्स थे जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
9: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
10: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजा राजा चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
9: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
10: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था। तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम

0: शेयर कर सके तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत की जनता के साथ संवाद रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दिन के 12:10 हुए हैं। कार्यक्रम गृह लक्ष्मी लेकर हाजिर हैं निधि और महजवीन।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का स्नेहिल नमस्कार। बहनों आज मेरे साथ है महजबीन, तो आइए शुरू करते हैं गृहलक्ष्मी का सफर।
1: बहनों स्वीकार करें महजबीन का भी नमस्कार। स्वागत है आपका, आप सबका ये पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे।
0: हाँ महजबीन, और बहनों ने रविवार के दिन के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई होंगी, है ना? तो बहनों आज छुट्टी का दिन है और हम सबको जिंदगी की रफ्तार को थोड़ी धीमी कर देनी चाहिए, क्यों?
1: हाँ हाँ निधि, क्यों नहीं, सही कहा तुमने। छुट्टियों में ही तो हमें समय मिलता है कि ताकि हम अपने हिसाब से उस दिन को बिता सके। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो उस दिन बहुत सारी काम करती हैं, जैसे बागवानी में रुचि रखती हैं वो करती हैं, या फिर कुछ इस तरह के काम जैसे कि सिलाई कढ़ाई है, सजा की सजावट है, या फिर कुछ ऐसे काम जो उनको लगता है कि शायद मुझे समय मिलता तो मैं कर पाती।
0: बिल्कुल, और बहनों को संगीत में भी रुचि होगी तो कुछ को गृह सज्जा में, है ना? जैसा कि तुम बता रही थी कि बहनें जो हैं बहुत सारी चीजें करना चाहती हैं, कुछ बागवानी करना चाहती हैं, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, तो सबकी रुचि अलग अलग होती है और इसके लिए हमें वक्त भी चाहिए महजबीन, और सप्ताह भर में तो वक्त नहीं मिल पाता। तो भाई आज रविवार है तो हमने सही सोचा है कि बहनें कुछ योजना बना रही होंगी कि आज मुझे ये करना है या वो करना है, तो ये तो हो गई रुचि की बात। लेकिन एक चीज और है महजबीन की जो हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए, है ना?
1: तो क्या बताना चाह रही हो निधि कि वो क्या है?
0: हाँ, तो वो है घर की अतिरिक्त सफाई, है ना? और हम महिलाएं जो हैं वो इस बात को लेकर ऐसे तो काफी सजग रहती हैं, लेकिन सप्ताह भर में जो छोटी छोटी जो सफाई है, जो छोटे छोटे काम है जो छूट जाते हैं अक्सर, तो वो हम आज के दिन कर सकते हैं, है ना?
1: और हाँ, छोटे छोटे काम जैसे कि किताबों की अलमारी की सफाई, किचन में जो डब्बे होते हैं ना, जो हम मतलब कुछ दिन साफ करते, जब
0: कुछ दिनों से जो हमने नहीं देखा होता है,
1: उनकी सफाई, बालकनी के गमलों की अतिरिक्त देखभाल, ये सभी हम छुट्टियों में ही तो कर पाते हैं। और हाँ मेरी एक चीज और यहाँ पे हम और कहना चाहेंगे कि उन जगहों की आप सफाई जरूर करें जो आप महीनों से छोड़ चुकी हैं, यानी कि ये बरसात का दिन है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसे जीव जंतु भी घुस सकते हैं जिनको हम नहीं मतलब देखा,
0: यूं तो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन जो खतरनाक हो सकते हैं। सही बताया तुमने, और हर हफ्ते इन्हें करके अपने घर को हम साफ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि हर दिन जो, क्योंकि हम अक्सर खाना बनाने में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में व्यस्त रहते हैं, तो छोटे छोटे काम है जो हमसे छूट जाते हैं। तो बहुत सही बात तुमने कही कि किताबों की अलमारी है या किचन के जो डब्बे हैं या बहुत सारे ऐसे कोने हैं जो हम नहीं देख पाते, उनकी देखभाल हम आज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छता को हमें अपने जीवन शैली का एक हिस्सा जरूर बनाना चाहिए।
1: देखो निधि, हम यहाँ पे अगर स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब हम उठते हैं ना तो साफ सफाई का ही ख्याल रखते हैं, ब्रश करना, फेस को धोना, हाथ को धोना, या फिर अगर महिलाएं हैं तो वो अपने किचन में लग जाती हैं, घर की सफाई में लग जाती हैं, और जो ये हमारे जो पुरुष साथी हैं वो अपने जब बागवानी में लग जाते हैं या टेरेस की सफाई में, बहुत सारी, लेकिन सफाई तो सभी करते हैं। और यहाँ पे ये कहना है ना निधि कि सफाई तो आप करते हैं लेकिन घर की सफाई के बाद जो गंदगी निकलती है उसका एक जगह बनाए, उसे यूं ही आप सड़क पर ना फेंके, वो भी
0: बहुत जरूरी
1: के अंदर आता है, उसे भी आप।
0: और महजबीन, जब हम नियमित रूप से सफाई करते हैं ना तो हमें बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है जो अगर जमा हो गए तो लगता है कि बस एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है, और जब आप एक ही दिन इसको करने बैठेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो सफाई के काम को हमें कभी टालना नहीं चाहिए, छोटे छोटे कामों को टालते रहने से हमारी परेशानी भी बढ़ जाती है और फिर इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है
1: और एक ध्यान लगा रहा था कि पता नहीं कब समय मिलेगा और मैं उसे कब करूंगी। उचित साफ सफाई न होने से घरों में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े ये सभी पनपने लगते हैं जो आगे चलकर बीमारी भी पैदा करते हैं। और इन सब से बचने के लिए आपको जो इसकी रोकथाम करने के लिए आपको जो बेहद जरूरी कदम है वो जो उठानी चाहिए, यानी कि आप ये ख्याल रखें कि इस बरसात के मौसम में ऐसे भी साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, बरसात में खासकर ज्यादा
0: हाँ, और एकदम शुरुआती दौर में ही हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने घरों की सफाई के साथ साथ अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। सही जगहों पर ही घर का कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए, और बच्चों को भी निर्देश देते रहना चाहिए कि कागज के टुकड़े हुए या पेंसिल के छिलके, रद्दी सामान सभी डस्टबिन में ही जाकर डालें।
1: बहनों, ये जो स्वच्छ जीवन की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की आदत हमें बचपन से ही डालनी चाहिए अपने बच्चों पर भी। चाहे बच्चों की बात यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे घर के साफ सफाई में अगर आप उसको आदत डालते हैं तो आपको भी एक काम हल्का हो जाता है कि आपको ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं होती है। कि
0: और बचपन से अगर हम सिखाते हैं ना, तो स्वतः बच्चे खुद ही करने लगते हैं, तो हमारा काम भी हल्का हो जाता है और बार बार फिर उन्हें टोकने की जरूरत नहीं होती। तो स्वच्छता, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ स्वच्छता होती है ईश्वर भी वहीं विराजते हैं, ये तो हम जानते ही हैं।
1: बहनों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा स्वस्थ रहने की जो बातें करते हैं उसमें जानकारी यही देते हैं हम कि किस तरह से आपको ये साफ सफाई का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और किस तरह से जो जीवन में स्वच्छता की आदत है उसे किस तरह से अपनानी चाहिए। सभी को अपने गली मोहल्ले शहर की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर की सफाई कर रहे हैं और बाहर छोड़ दिए, नहीं, आपको वातावरण का भी ख्याल रखना
0: बहुत जरूरी बात बताई तुमने। मैं जमीन
1: से तो तुमने जैसे कहा कि बीमारियां दूर होती, सही में बीमारियां तो दूर होती हैं और साथ में अगर स्वस्थ रहना है तो साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। खाली अपनी तरफ सीमित नहीं रहना, आप अपने घर तक सीमित नहीं रहना, आपको थोड़े बाहर भी
0: और जरूर। अगर वातावरण स्वच्छ रहता है मैं जमीन, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, और अगर हम इन आदतों को अपनाते हैं अपने जीवन शैली में तो हम अपने वातावरण को खूबसूरत और स्वच्छ जरूर बना पाएंगे।
1: तो इसी के साथ अब हम अपनी बहनों को थोड़ा ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
8: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
9: क्या हुआ पापा?
8: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
8: काट दिया।
9: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
8: फ्रॉड?
9: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
8: तो पैसे गवाओगे।
10: RBI कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
13: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
14: स्वागत है बहनों आप सबका कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और मेहजबीन अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कड़ी हम लेकर आते हैं वटवृक्ष, उसके अंतर्गत आज हम क्या बताने जा रहे हैं अपनी बहनों को?
15: बढ़ती उम्र में कैसे रहें स्वस्थ। तो बहनों, यूं तो हर उम्र में स्वस्थ रहना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप जब आपको लगे कि आपको मतलब आप बीमार हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको सुस्ती आ रही है, तो ये यहाँ पे कहना जरूरी है कि जब बढ़ती उम्र होती है ना, तो वहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है।
14: हाँ।
15: लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो हमेशा ज्यादा सजग रहने की जरूरत है।
14: बिल्कुल मेहजबीन, सही बताया तुमने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर और मस्तिष्क में अनेक तरह के परिवर्तन होने लगते हैं, शरीर की आवश्यकताएं भी बदलने लगती हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं घरों में जिनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें हमें खास ध्यान देने की जरूरत है कि उनका आहार कैसा हो, उनकी जीवन शैली हो, और उनके आहार और जीवन शैली में काफी बदलाव लाने की जरूरत होती है। बढ़ती उम्र में भोजन भी अलग प्रकार का होना चाहिए, है ना? ऐसा आहार जो सुपाच्य हो और वजन को बढ़ने ना दे और पोषण भी दे।
15: और भोजन में फाइबर की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ पाचन तंत्र थोड़ा मतलब मजबूत नहीं रहता,
14: तो
15: कमजोर, हाँ कमजोर हो जाती है। दांतों का भी जो समस्या होती है ना दांतों की, वो भी शुरू होने लगती है। तो देखा जाए तो बढ़ती उम्र में धीरे धीरे शरीर के हर अंग मतलब जवाब तो नहीं बोलेंगे लेकिन कमजोर होते जाते हैं।
14: तो उसी हिसाब से हमें परिवर्तन भी लाना चाहिए अपने जीवन में, और हमें बुजुर्गों को ऐसा भोजन देना चाहिए जिसे खाने और पचाने में उन्हें सुविधा हो, जैसे सूप, दलिया, खिचड़ी, हलवा, जूस, खीर वगैरह, है ना? जो जैसे तुमने बताया कि दांतों की समस्या भी आम बात हो जाती है इस उम्र में, तो ऐसा भोजन जो उन्हें चबाने में आसान हो, खाने में आसान हो और पचाने में भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
15: अक्सर लोग समझते हैं कि उम्र हो जाने से बीमारियां तो होंगी ही, लेकिन हमारे बुजुर्ग
14: ये बहुत आम धारणा है। हाँ, कि अब उम्र हो गई है तो अब भाई बीमारियां तो साधारण सी बात है और उन्हें लोग एक नॉर्मल सी बात लेकर चलने लगते हैं।
15: आप चाहे तो स्वस्थ रह सकते हैं इस उम्र में भी, आप चाहे तो उस बीमारी को दरकिनार करके आप योगा करें, मेडिटेशन करें, खान पान का ध्यान रखें। दवाइयां तो चलती ही रहती हैं, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्या बोले दृढ़ जो संकल्प होना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रह सकते हैं,
14: रह सकते हैं,
15: ये ज़हन
14: विचारधारा बदलने
15: की जरूरत।
14: और बहुत सारी बातें जैसे जीवन शैली की बात हम करते हैं तो मॉर्निंग वॉक, योगा, हल्के व्यायाम, खेलकूद में भी हिस्सा ले सकते हैं हमारे बुजुर्ग। आमतौर पर सोचते हैं कि अब भाई हम बूढ़े हो गए, हमें खेलने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ वहाँ जानने की, और भी कुछ शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि हम कूद नहीं सकते, हम दौड़ नहीं सकते। लेकिन अपने शरीर के हिसाब से ही करें, मतलब हल्के व्यायाम करें जिससे आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं।
15: हाँ निधि, और यहाँ पे एक बात और करना है कि आप समझिए कि आप एक बच्चे हो गए हैं, आपको उतना ही खुश रहना है, उतना ही स्वस्थ रहना है, उतना ही आपको खेलना कूदना है, और हो सके तो अपने पोते जो और पोतियां नाती नवासे हैं, हाँ जितने भी बच्चे हैं सभी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस एक चाय की दुकान पे बैठ गए हैं, चाय ले रहे हैं
14: और अगर रिटायर हो गए तो हमारा काम है सिर्फ
15: ये चीज, इस चीज को आप,
14: तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विचारधारा को बदलनी होगी और हम अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखकर इस उम्र में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन सकते हैं। लेकिन महजबीन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवा वर्ग जो है, घर में जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि घर के बुजुर्गों को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, है ना। उन्हें मदद की जरूरत तो होती ही है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता और तनाव ना दें और उनके साथ वक्त बिताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए होता है मानसिक शांति, है ना।
15: बिल्कुल, साथ ही साथ जिस तरह से तुमने कहा कि आर्थिक स्वावलंबी होना भी जरूरी है, और हमारे घर के परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को
14: बिल्कुल
15: इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
14: तो इस उम्र में भी स्वस्थ रह सकते हैं हमारे बुजुर्ग, है ना। तो चलो एक गीत सुनते हैं।
15: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी निधि और महजबी के साथ। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

साथियों, आप सुन रहे थे भारत भारती कार्यक्रम में मगही भाषा में लोकगीत। कलाकार थे बिंदुवासिनी देवी और साथी। हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और लोक रंग में सुनते हैं खड़िया भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं बीबियाना डुंगडुंग और साथी।

श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे लोक रंग कार्यक्रम में खड़िया भाषा में लोकगीत। कलाकार थी बीबियाना डुंगडुंग और साथी। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: has informed that the Tibet Autonomous Region authorities have set up two dedicated 24-hour English language hotlines to assist the families seeking information about the missing foreign nationals in the wake of the recent flash floods and mudslides. It said the hotlines can be reached at 0086-891-681-7165 and 0086-183-0802-6705. In hockey, defending champions Germany will take on Spain in the men's AFIH World Cup final in Wavre, Belgium at 8 p.m. Indian Standard Time today. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से एक बजे हैं 1:10 हुए हैं आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 35 लाख महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर हुई स्वावलंबी जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित जल्द होगा मुकदमों का निपटारा स्वाइन फ्लू को लेकर झारखंड में भी अलर्ट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का दिया निर्देश फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन 13 सितंबर को मतदान और सिमडेगा में चल रही मेजर ध्यानचंद सीनियर सिमडेगा जिला महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज एसटीसी सिमडेगा और सेंट जेवियर बरवाडी ने दर्ज की जीत और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से कारोबारी आत्मनिर्भर बन रहे हैं इनमें 46% महिलाएं हैं आज देशभर की 35 लाख महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर स्वावलंबी बनी हैं श्री मोदी ने आगे कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है
3: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है नशा मुक्त युवा ड्रग फ्री इंडिया बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है
2: श्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ चारों ओर देशभक्ति के कई रंग लेकर आया
3: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है राज्य सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत को पूरे राज्य के लिए विशेष अदालत नामित किया है इस अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड में होगा जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह व्यवस्था की गई है झारखंड की भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर शुरू की गई भर्ती सुधार यात्रा पाकुड़ पहुंची इस दौरान छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा
4: नौकरी बेचना यानी झारखंड के आत्मा को बेचना झारखंड में पहचान से नहीं बल्कि मेहनत से नौकरी होगा जब तक इस बात का गारंटी नहीं मिलेगा कि पैरवी से नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगा 2400 जिला घूम रहे हैं आगे पूरा झारखंड बंद करेंगे पूरा चक्का जाम करेंगे
2: झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एम एस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। देवघर श्रावणी मेला 2026 के दौरान रेल से यात्रा करने वाले कांवरियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 7.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वी रेलवे के अनुसार जसीडीह, देवघर, बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ स्टेशनों से इस वर्ष 30,99,846 यात्रियों ने सफर किया। इससे रेलवे को 14 करोड़ 24 लाख रुपए की आय हुई, जबकि 2025 में 12 करोड़ 81 लाख रुपए की आय हुई थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को सतर्क रहने और संक्रमण से निपटने के लिए जिला अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है।
5: स्वाइन फ्लू को देखते हुए मैंने एडवाइजरी जारी कर दिया है। सभी सदर हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज के CS हुआ, वहाँ की प्रिंसिपल को मैंने निर्देश दिया है कि अलर्ट रहिए, कहीं भी अगर आप कोई लक्षण देखिए स्वाइन फ्लू का तो उनको एडमिट कराइए और प्रॉपर इलाज कराइए। सभी मेडिकल कॉलेज में, रिम्स में, सदर हॉस्पिटल में 10-10 बेड अतिरिक्त हमने रखा है। लोग बाहर से आ रहे हैं, रांची प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल टीम वहाँ पर तैनात रहेंगी।
2: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू होगा। वहीं 13 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी 1 सितंबर शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 3 बजे है। चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर के अनुसार प्रत्याशी के लिए चैंबर की एक वर्ष की सदस्यता जरूरी है। राजधानी रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रांची में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपये प्रति किलो है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है, यह प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है और यातायात जाम की समस्या का एक प्रभावी समाधान है।
6: देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर GT8 संडे और साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग की क्रेज बढ़ रहा है। साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है, फिट रहने का मंत्र है, ट्रैफिक का भी समाधान है। साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर सिमडेगा में आयोजित 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर सिमडेगा जिला महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज महिला टीमों के बीच 9 मैच खेले जा रहे हैं। अभी तक 2 मैच के परिणाम आ चुके हैं। पहले मैच में एसटीसी सिमडेगा ने एसटीसी लचरागढ़ को 3-0 से और दूसरे मैच में संजेवियर बरवाडी ने संतना सामतोली को 1-0 से पराजित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 35 लाख महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर हुई स्वावलंबी। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा

0: शाम में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित, जल्द होगा मुकदमों का निपटारा। स्वाइन फ्लू को लेकर झारखंड में भी अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का दिया निर्देश। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, 13 सितंबर को मतदान। और सिमडेगा में चल रही मेजर ध्यानचंद सीनियर सिमडेगा जिला महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज एसटीसी सिमडेगा और सेंट जेवियर बरवाडी ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अनुरंजनी कार्यक्रम में सुनते हैं गिरजा देवी के गाए कुछ ख्याल।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे अनुरंजनी में गिरजा देवी के गाए ख्याल गायन। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित।

0: कार्यक्रम उड़ान।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: प्रिय श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम बुजुर्गों की सेवा के बारे में बात करना चाहते हैं और आज की कहानी भी यही बताती है। प्रिय श्रोताओ, जहाँ आज के समाज में देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते निभाते जिंदगी के अलग अलग पड़ाव से गुजरता है, जैसे कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना और कड़ी परिश्रम के साथ उन्हें पढ़ा लिखा कर शादी विवाह करके अपनी उम्र के उस पड़ाव में चला जाता है कि नौकरी के रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी के पास इतना समय नहीं रह पाता कि एक दूसरे का सहारा बने, अंत में बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वहीं जवान बच्चे और बहुओं को बुजुर्ग के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है और तभी परिवार में एक दूसरे के प्रति मतभेद शुरू हो जाता है और इस तरह परिवार को टूटने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था जिंदगी का वह पड़ाव है जहां बुजुर्गों को अपने बच्चों से प्रेम और सेवा की चाहत होती है। लेकिन वहीं आज के समाज में पहले के समाज के भांति काफी फर्क देखने को मिलता है कि आज के समाज में सिर्फ इंसान अपने से बड़ों का आदर सम्मान से नहीं, लेकिन उनकी ज्यादा से प्रेम रखते हैं। जहाँ बच्चों को होना चाहिए था कि अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन वहीं आज के समाज के बदलते दौर में बच्चों को सेवा करने में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। रविवार की शाम थी और उस दिन परिवार के सभी लोग घर में ही थे, तभी अचानक से घर में बहुत आवाज करते हुए रागिनी अपने परिवार वालों पर चिल्ला उठती है।
3: अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है।
4: अब तुम क्यों गुस्से से सबकी शाम खराब कर रही हो रागिनी? ऐसा भी क्या कर दिया किसी ने इस घर में?
3: अरे तुम्हें नहीं पता क्या, माँ और बाबूजी ने हमारी नाक कटवा कर रख दी है मोहल्ले में।
5: भाभी हुआ क्या है ये तो बताइए, आप भी बस पहेलियाँ सी बुझा रही हैं।
6: हुआ क्या है, अभी मैं सब्जी लेने गई थी तो देखा बाबूजी और माँ हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे हैं और आसपास पड़ोस वाले मुंह नीचे किए हुए हंस रहे हैं। और पड़ोस की विमला आंटी है ना, वो मुझे बोली बताओ इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या। मैं तो उनकी बात पर चुप ही हो गई। वैसे अगर सच बताऊं ना तो जिस दिन से बाबूजी रिटायर हुए हैं तब से तो बाबूजी के तेवर ही बदल गए हैं।
5: तो इसमें तेवर बदलने की क्या बात है यार, इतना भी किसी बात की हद होती है? अरे वे बुजुर्ग अवस्था में है, कैसे भी रहे।
6: अरे जी घर में बच्चे भी हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है इन सब बातों का, आप इन बातों को समझते नहीं हैं।
3: अरे देवर जी, शिवानी ठीक तो कह रही है, परसों शाम की ही तो बात है, बाबूजी रसोई घर से तेल गरम करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वो तो जब मैं चाय लेने गई तो माँ झटके से बैठ गई, परंतु बाबूजी सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो।
2: अभी ये बात घर में चल ही रही थी तभी पीछे से राजेश जी और निर्मला जी सैर करके वापस आ गए थे और शिवानी की बात उनकी कानों में पड़ चुकी थी। कुछ कहे बिना चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गए कि अचानक बड़ा बेटा अंकित बोला,
7: पापा ये क्या नाटक चल रहा है, आजकल के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे हम सब परिवार के बारे में।
8: नाटक? तुम मुझे बताओ अपनी बीवी का ध्यान रखना क्या इसे नाटक कहते हैं? मैं इतने वर्षों तक अपने दफ्तर के कामों में उलझा रहा, कभी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे लगा कि वो खुश है। जब से दो दो बहुएं आई हैं तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी, और जब भी उसको रसोई में काम करते हुए देखता तो यही सोचता था कि शरीर चलता रहे इसलिए काम काज में लगी रहती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीनों में मैंने पहली बार महसूस किया वो बेचारी तो शरीर में जान ना होते हुए भी बहू के डर से रसोई में काम करती है ताकि बुढ़ापे में कोई उससे दो प्यार के बोल बोल सके। और शिवानी बेटा, जो तुम तेल की बात कर रही हो, मैंने खुद निर्मला को 3 दिन पहले तुम दोनों को यह कहते सुना था कि एक बार तेल गर्म करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, परंतु तुम दोनों बहुओं ने अनसुना कर दिया। वो तो मेरी पत्नी है ना, जिसने पूरी उम्र अच्छे और बुरे में मेरा साथ दिया है, मैं उसको कैसे छोड़ देता। रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा सबक मिला, काश मैंने शुरू से निर्मला के स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता तो शायद उसका स्वास्थ्य आज ज्यादा अच्छा होता। आज तुम पूरे परिवार को उसकी देखभाल करनी नाटक लगता है।
5: पापा बस भी करो, कुछ बातों की हद भी होती है। हमारा कहने का यह मतलब नहीं है कि तुम माँ की सेवा मत करो, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आज के समाज को देखकर हमें अपनी मर्यादा पर रहना चाहिए।
8: अरे बेटा, तुम ही बताओ, अगर एक पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो बीमारी में एक पति अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता है क्या? रही बात हाथ थामने की, पत्नी का हाथ थामने में किस बात की शर्म है? यदि समाज इस पर हमारी हंसी भी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ। यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। ईश्वर की दया से मेरे ना रहने के बाद भी मेरी पेंशन इतनी आएगी कि तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सकेगी।
2: राजेश जी के कड़वे मगर सच्चे बोल अंदर तक सभी बच्चों को हिला गए। वे जानते थे कि उनके पिताजी इरादे के इतने पक्के हैं, यदि उन्होंने ठान लिया तो उनको इस घर में रहने नहीं देंगे। और फिर अचानक सबके तेवर बदल गए और बहुत देर से चुप निर्मला जी बोली,
0: अंकित और विपिन, मैं आज तुम्हें एक ही सबक देना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, परंतु अक्सर पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दे पाता। बेटा, मैं तो बस यही कहूंगी कि तुम दोनों भी रागनी और शिवानी का इसी प्रकार ध्यान रखना शुरू करो जैसे तुम्हारे पिताजी मेरा ध्यान रखते हैं, ताकि तुम्हारी रिश्तों की मिठास और गहरी हो और तुम लोगों का रिश्ता अटूट हो। हम औरतें पूरी उम्र बस अपने पतियों के प्यार के लिए, दो मीठे बोल के लिए और साथ बिताए कुछ पलों के लिए ही तरसती रहती हैं।
2: निर्मला जी की बात सुनकर आंखों से शिवानी और रागनी की आंसू निकल आए कि जिस सास ससुर को वह कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को अपनी बहुओं की सेवा और उनका ध्यान रखने को कह रहे थे।
9: माँ, हमें माफ कर दो, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं।
6: सच में माँ, हम ये भूल ही गई थी कि आपके कारण आज हम इस घर में बस पाए हैं। हमें माफ कर दो माँ।
5: अरे तुम भी अपना नाटक बंद करो और जाओ, हम दोनों के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाओ। अरे भाई, मौसम भी तो देखो, बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ बाहर लगे झूले पर चाय का आनंद उठाएंगे।

तो श्रोताओं, सुना आपने आज की नाटक में किस प्रकार से एक परिवार जो टूटने के कगार पर था और जिंदगी के उस पड़ाव पर था, जब राजेश जी और उनकी पत्नी को उनके बच्चों की बहुत जरूरत थी, तभी उनके परिवार में आपसी मतभेद बढ़ने के कारण वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। तभी निर्मला जी की सूझबूझ के कारण सभी के चेहरे की मुस्कुराहट खिल उठी और फिर से एक परिवार का कड़वापन बदल गया और एक मिठास परिवार में आ गई। राजेश जी के कठोर मगर सत्य वचन से घर में सबकी आंखें खुल गई और इतना ही नहीं, उनके बच्चों को इस बात का भी एहसास हुआ कि उनके माता पिता के ही कारण वे जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं।

0: श्रोताओ, हम आपको बताना चाहते हैं कि वृद्धजन हमारे परिवार के शोभा और ज्ञान भंडार रूपी धरोवर होते हैं। जीवन के विपरीत हालातों में वे हमें अपने जीवन का अनुभव लाभ प्रदान करते हैं। हमारे लिए किसी धरोवर से कम नहीं है, मगर व्यस्त जीवन में आजकल की संतान अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा या सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश होना पड़ता है। कहते हैं परिवार व समाज की बुनियाद है बुजुर्ग, गहरी सोच व अनुभव के भंडार है बुजुर्ग, सफलता की कुंजी व श्रद्धा के पात्र है बुजुर्ग, हमारे समग्र विकास के चिंतक है बुजुर्ग। जी हाँ, वृद्ध अवस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है ना झुकनाने वाली कूट सच्चाई है। आज उम्र के इस पड़ाव से हमारे बुजुर्ग गुजर रहे हैं, कुछ दशक बातें इस मांजरे से हमें गुजरना है। वृद्ध जो आज है, एक समय ऐसा था जब वे युवा थे, कर्मशील थे, इनके भी शौक व सपने थे। हमें उनकी सेवा के साथ ही उनके सम्मान का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बूढ़े इंसान का दिल बच्चों जैसा भोला होता है। वृद्ध लोगों के अनुभव का लाभ उठाया जाए तो ये समाज राष्ट्रीय कल्याणकारी साबित हो सकता है। हमें अपने बालपन की उन यादों को ताज़ा करना चाहिए जब हमने इन्हें बुजुर्ग की उंगली पकड़कर चलना सीखा था और इन्हीं के कंधों पर बैठकर स्कूल जाया करते थे। जब हम अपने पैरों पर खड़े होने लायक बने तो दुनिया के रिवाज बदलकर उनके सम्मान व एहसान के खातिर ही कुछ अच्छा करें, वरना आज तो बूढ़ों को असहाय अवस्था में केवल दो ही चीज़ें मिलती हैं, पहली डांट फटकार और दूसरा वृद्धाश्रम। किसी ने खूब ही कहा है, भारतीय संस्कृति के रक्षक है बुजुर्ग, हमारे रक्षक व मार्गदर्शक हैं बुजुर्ग, सिर्फ व सिर्फ सम्मान के भूखे हैं बुजुर्ग, परिवार व समाज की शान है बुजुर्ग। हमारे बुजुर्ग हमसे उतनी ही बड़ी अपेक्षा नहीं रखते जितनी कि अन्य रिश्तेदार की होती है। उम्र के अंतिम पड़ाव में वे हमसे महंगी कार व बंगला या कोई ऐशोआराम की वस्तु नहीं चाहते, बल्कि वे हमसे प्यार व सम्मान तथा थोड़ी सी केयर चाहते हैं जो हमें उन्होंने दी थी। जैसा कि उन्होंने हमसे प्यार किया था, वैसे ही उन्होंने हमारी सेवा की थी। उनकी अकेलेपन तथा अस्वस्थ स्थिति में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, यही सुरक्षा का भाव उनके जीवन को सुकून देता है। वृद्धों में अकेलापन व भय की समस्या, इसके लिए ना तो पुरानी पीढ़ी जिम्मेदार है और ना ही युवा पीढ़ी, दोनों की अपनी अपनी मौलिक गलतियां एवं सोच इस गैप को बड़ा कर जाती है। एक तरफ आज की पीढ़ी वृद्धों के अनुभव अपने निर्णय लेने में बाधिश रुकावट तथा सोच कहकर खारिज कर देती है, वही वृद्ध पीढ़ी के लोग बदलते समय के साथ ना तो स्वयं को बदलना चाहते हैं और ना ही सोच को, इसलिए दोनों पीढ़ियों में मेल मिलाप नहीं हो पाता है। इस तरफ सम्मान तथा स्वाभिमान को लेकर दो पीढ़ियों के बीच में अलगाव हर कहीं देखने को मिलता है। आज के समय की जरूरत है कि वृद्ध भी समय को समझने तथा अपना दायित्व युवा पीढ़ी के कंधे पर डालकर उनके पथ दर्शक बने, और युवा को भी चाहिए कि वे आवश्यकता पड़ने पर वृद्ध व बुजुर्गों के अनुभवों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा जीवन में हर एक पल उनके जीवन का ख्याल रखें। बुजुर्ग की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने जैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: गुड आफ्टरनून, This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister Modi highlights women empowerment through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youth, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued for Odisha today. And defending champions Germany to take on Spain in the men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is holding a bilateral talks with President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in Tashkent today. The two leaders are reviewing cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
4: Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat ye abhiyan is samay pure desh mein tezi se aage badh raha hai. Iska laksh bilkul saaf hai. Nasha Mukti Yuva, drug free India. Bahut sare log, visheshkar hamare yuva bahut badi sankhya mein iska hissa ban rahe hain. Aakhir yeh Bharat ke yuvaon ki health, unki happiness aur ujjwal bhavishya ke liye hi hamara samuhik sankalp hai.
3: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
4: Nasha Mukt Bharat ke liye kya aap koi powerful slogan bana sakte hain? Ki hamare young musicians aise songs bana sakte hain jinme drug free life ka message ho? Kya students aur theater groups dil ko chhu lene wale short plays likh sakte hain jinme drugs ke khatron ke sath sath unse bahar nikalne ka rasta bhi ho? Hamare desh mein behtareen content creators ki kami nahi hai. Mera aagrah hai ki ve अलग-अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
3: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
4: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी. फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी. पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया.
3: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean

0: becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग-अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे-धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: Mr. Modi said, today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatrajya.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
1: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है।
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The death toll from flash floods in central Nepal has risen to 734 today, with more bodies being recovered. Nearly 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded on the 5th day since the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the flash flood tragedy. In a social media post, Mr. Jaiswal said contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The External Affairs Ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. India has provided 68.5 tons of relief materials to the flood-hit Nepal and sent technical teams, forensic experts and equipment to assist in search and rescue operations. A fourth flight carrying 11 tons of relief assistance landed in Nepal today, the Ministry of External Affairs said in a post on X. The Indian Embassy Kathmandu, in a statement yesterday, said India has sent a specialized technical contingent, including tunnel experts, along with equipment for search and rescue operations in hydropower tunnels in the flood-affected Trishuli area of Nuvakot district. A fresh flood threat is emerging in northern Odisha as the Subarnarekha continues to rise in Balasore amid persistent rain. The rainfall is being fueled by a low-pressure area over northwest Bay of Bengal and it joining west

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं? जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: शुतो हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 2:30 कार्यक्रम जय भारती में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, खासकर हमारे फौजी भाइयों का। देश के वीर जवान, हमें आप पर गर्व है। रितेश करता है आपको सलाम।

0: श्रोताओं, जय भारती कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:55 होने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के गोंदा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार सदैव राष्ट्र निर्माण, जनभागीदारी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाखों राशन कार्ड धारकों को हर माह सरकारी अनाज वितरित करने वाले करीब 25,000 पीडीएस डीलर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 सितंबर को राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। इनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर वक्ताओं ने चिंता जताई। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन में आदिवासी समाज के हित और प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश भर में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। एक समान समय बैंकिंग और डिजिटल भुगतान लेन देन में सटीक समय चिन्हित करने, रेलवे, हवाई अड्डों और अन्य परिवहन प्रणालियों के समन्वय में, साथ ही आपातकालीन और अन्य समय संवेदनशील सेवाओं के समन्वय में सहायक होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले बाल गोपाल और नमो दही हांडी प्रतियोगिता का अल्बर्ट एक्का चौक पर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने दही की मटकी भी टांगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को बाल गोपाल प्रतियोगिता और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा।
3: नमो दही हांडी प्रतियोगिता 4 और 5 दिन का उत्सव होता है और ये उत्सव में 4 तारीख प्रथम दिन बाल गोपाल प्रतियोगिता, राधा कृष्ण प्रतियोगिता, 4 तारीख को जो झांकी है उसका थीम है वंदे मातरम।
1: राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्र महतो ने आज साहिबगंज जिले में छात्रों से मुलाकात की और आंदोलन के आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने वहां उपस्थित छात्रों से कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी के हेमराजी केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने वाले हैं। पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: News Services Division of Akashwani presents Northeast Diary.
1: Good evening and a warm welcome to another episode of Northeast Diary, your window into the vibrant cultures, inspiring stories and unfolding events from the eight jewels of India's Northeast. I'm Vinita Thakur and in today's episode we bring
2: हमारे कार्यक्रम को लेके लोगन में बहुत उत्सुकता है, इसीलिए हमें अपनो द बेस्ट देना है। इज इट क्लियर? सभी समझ गए? और राजीव भाई दिखाई नहीं दे रहे।
3: जी मैडम।
2: राजीव भाई आप उधर पीछे क्यों बैठे हैं? आगे आइए ना। राजीव भाई आप इन सब के इंचार्ज हैं। आज एक रिहर्सल करावे के बाद कल सुबह सकुशल इन सबन को लेकर दिल्ली पहुँचावे की जिम्मेदारी आप पर है।
3: आप चिंता मत करो मैडम, सब कछु बहुत अच्छो है जाएगो।
2: ओके गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिहर्सल। ओके चले हम सभी।
4: जी मैडम चलिए चलिए मैडम।
2: बोल श्री बाके बिहारी लाल की
5: जय।
6: जो ना बोले बामे
5: दे
6: और लड्डू चार कचौड़ी छह।

0: और भैया मदन लाल, क्या हाल चाल है?
1: वही हड्डी वही खाल है।
0: अच्छा चल बढ़िया है भैया, पर ये हड्डी और यही खाल रखियो, बदल मत दियो।
1: ए ना बदलूंगो ना
0: यार, ये सड़क तो बहुत बढ़िया बना दई है, और ये बसऊ बहुत बढ़िया है, मस्त है एकदम।
1: हमें न कुछ को लो ना रे, मक्खन सी जा रही है बस।
0: बेटा पैसा खर्च भे तभी जामे मजा आए रो है, समझो।
1: हमे सो तो है चिद्दा भैया,
0: दिल्ली आवे ही बारी है।
1: ठीक है भैया, जय गोपाल की, जय गोपाल की।
0: वाह क्या शानदार होटल है ते। अरे भैया मैडम जी ने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे हो।
2: अरे मैडम जी के तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होते हैं, पता है?
3: अरे मैडम जी तो बहुत बड़ी कलाकार हैं, सब इनकी बहुत इज्जत करे हैं।
2: भैया जही मारे तो कलाकारन की कदर करे हैं। अब देखो ना, एक बढ़िया होटल में ठहरने की व्यवस्था करी है हम लोगों की।
0: कछु भी कहो, मजा आ जाएगा जावार की ट्रिप में।
2: बिल्कुल, जी वारी ट्रिप तो याद रहेगी।
3: अरे शकील, बस में ते प्रॉपर्टी को सारा सामान उतार लियो।
4: आप उसकर भैया ले लियो, अंजो और मनमोहन पीछे लेके आ रहे हैं।
3: ठीक है, कॉस्ट्यूम सबन की चेक कर लियो।
4: ठीक है, कर लूंगा।
5: फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
6: या यस आई नो इट।
7: राधे राधे बहन जी।
8: नमस्कार। राधे राधे, होटल के रिसेप्शन काउंटर पर आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ?
7: बहन जी यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं, पर हमारी मैडम जी ना दिखाई पड़ रही, मुझे शिवानी मैडम जी से मिलनो है।
8: अच्छा मैडम शिवानी श्रीधर जी से?
7: मैं बहन जी।
8: मैडम शिवानी जी वो सामने खड़ी हुई है, आप उनसे वहाँ जाकर मिल लीजिए।
7: ठीक है बहन जी, थैंक यू। राधे राधे।
8: वेलकम। राधे राधे।
7: शिवानी मैडम जी। शिवानी मैडम जी। मैडम जी शिवानी मैडम जी।
9: एक्सक्यूज मी सर, आई एम जस्ट कमिंग।
10: मदन जी क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप, क्या हुआ?
7: मैडम जी एक मिनट मेरे कमरा में चलो।
10: अरे अरे अरे मदन जी, मेरा हाथ पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे?
7: अरे मैडम जी आप लग मेरे संग मेरे कमरा में तो चलो, फिर देखियो आप का गजब है गोवाजा होटल में।
10: ऐसा भी क्या गजब हो गया है होटल में भाई, जरा मुझे मालूम तो पड़े।
7: मैडम जी जा होटल के कमरा में एक पोखर रहता है।
10: क्या पोखर? आपका मतलब है कि गांव में जो एक छोटा सा तालाब होता है वो?
7: हमें मैडम जी वही, और जा बजे थे हमारे कमरा में भैंसिया आ जाएगी।
10: क्या मदन जी भैंसिया और यहाँ?
7: हमें मैडम जी, मैडम जी आप तो जानो ही हो कि अगर भैंसिया को कहीं पे पोखर दिख गई ना तो समझो कि गई भैंस पानी में।
10: मदन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदन जी आपने यहाँ पे ऐसो का देख लियो है, चलो देखते हैं का है गो यहाँ। बताइए कौन सा है आपका कमरा?
7: मैडम जी मोए तो जी वारी गैल लगे कमरा वारी, पता ही नहीं पर रहा मैं कित मऊ से आया हूँ कित मऊ जाऊंगो, मेरी कमरा वाली गैल कितको चली गई।
10: अच्छा पहले आप मुझे अपना रूम नंबर बताइए।
7: मैडम जी कमरा को नंबर तो ध्यान है मुकू, हाँ क्योंकि वहाँ में कानूनी धारा लगी भैया ना।
10: कानूनी धारा?
7: हाँ धारा 302 जी है मेरे कमरा का नंबर।
10: ओके आइए अभी देखते हैं। ये वाला है रूम नंबर 306543 और ये रहा आपका रूम नंबर 302, यही है ना?
7: हाँ मैडम जी जी है जी है।
10: आइए चलते हैं कमरे के अंदर, चलिए दिखाइए।
7: देखो मैडम जी चार तरफ देखो, मैं जब पर्दा को हटा रहा हूँ, जैसे ही पर्दा हट

0: तुम्हें बाकी पीछे सब दिख जाएगा पोखर।
1: चलिए हटाइए पर्दा, देखते हैं।
0: देखो जीरा पोखर
1: ये। मदन जी आप भी कमाल के व्यक्ति हैं। आप भी ना वास्तव में बहुत भोले हैं, बहुत फनी हैं आप। अरे ये पोखर नहीं है, ये बाथिंग टब है मदन जी। ये ना सभी अच्छे बड़े होटल्स में होता है। और ये बाथरूम यानी कि स्नान घर का एक हिस्सा है, लोग इसमें नहाते हैं।
0: मैडम जी हमारे गांव में तो जाए पोखर कह में और जामे भैंसिया नाम है, जाए लिए मैं डरप गया।
1: इट्स ओके, अब आप ना नेको चिंता मत ही करो और जल्दी तक नहाए धोए के तैयार है के आ जाओ नीचे। मदन जी संजय को आप है बढ़िया सो शो करनो है, ठीक है? अब मैं चलो हूँ। ओके आ जाइए जल्दी।
0: जी मैडम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
1: राधे
0: राधे। हे गोपाल जी, अब जिंदगी में और कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा। जय हो बंसी राधे। अरे किशनपाल, क्या मैडम जी कार में बैठ के काय को हंस रहे हो भाई, इतनी का आवाज आ गई।
2: अरे बदल जे देख का बढ़िया चटकुल्ला आयो जा मोबाइल में।
0: अबे कौन सा चटकुल्ला, मुझे भी तो बता।
2: दो छोरी एक बस में सीट पे बैठ हुए कुछ झगड़ रही थी, तभी वहाँ पे बस को कंडक्टर आयो और छोरी ने बोलो अरे लड़ो मत, जो छोरी उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए। हाँ। बस फिर कहा तो पूरा रास्ता दोनों छोरी खड़ी खड़ी चली गई, दोनों में तो एक और सीट पे ना बैठी। अरे मदन तू जावा यहाँ पे क्या कर रहा, तू तो रिहर्सल में होना चाहिए।
0: अरे हाँ किशन याद आ गई, मैडम जी ने यहाँ तेरे पास गाड़ी पे भेजो है।
2: मेरे पास क्यों
0: भाई? मैडम जी को ब्लड प्रेशर जा गाड़ी में है, वो मुकू दे दे।
2: कहा मैडम जी को ब्लड प्रेशर?
0: मैं लाला।
2: अबे मदन ढाको, मतलब मैडम जी को फिर से ब्लड प्रेशर है को?
0: मतलब
2: अरे लाला तू ना जाने, मैडम जी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इनकी तबीयत बिगड़ जाए है, लगे बिनकू फिर से ब्लड प्रेशर है को। लाला मदन अब अगर बिन की तबीयत ठीक ना है भाई तो शाम को हमारे प्रोग्राम को कहा हो बेगो?
0: भाई जी तो बहुत चिंता वाली बात है गई, अब हमें कहा करना चाहिए भाई?
2: लाला हमें फौरन ही कौ डॉक्टर को लेके तुरंत मैडम जी के पास पहुंचना चाहिए।
0: हमें लाला जी ठीक रहेगा,
3: चल चल फटाफट चल
0: कौ डॉक्टर लेके आमे और मैडम जी को दिखा मैं।
2: जल्दी चल आजा, चल चल आजा, चल चल। डॉक्टर साहब राम राम।
4: राम राम, राम। आइए श्रीमान बताइए क्या है काम?
2: डॉक्टर साहब हम लोग कलाकार हैं, बाहर के रहवे वाले हते, जा शहर में प्रोग्राम करवे को आए।
4: कौन है आप दोनों महानुभाव, कृपया पहले अपना परिचय दें।
2: डॉक्टर साहब मैं हूँ किशनपाल और जी है मदन लाल। हम लोग संगीत नाटक मंडी के हैं कलाकार।
4: किशनपाल मदन लाल कितनी प्यारी जोड़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, मगर जो कहना है गाकर कहिए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, लाला मदन
0: हाँ?
2: चल है जा शुरू।

0: ce.
1: बस बस बस, म्यूजिक ओवर हो रहा है, कहाँ है पेशेंट, जल्दी बुलाओ।
2: डॉक्टर साहब, बाके लिए तो आपको हमारे संग चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैडम जी की तबीयत ठीक ना है, बिनको ब्लड प्रेशर है गो है। जालिए मैडम जी तो अपने कमरा में ही है।
1: ब्लड प्रेशर, ये तो बहुत ही खौफनाक बीमारी है, मुझे जल्दी से पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए। आप दोनों जल्दी मेरे साथ आइए।
2: आ जाओ डॉक्टर साहब।
1: ये पकड़ो मेरा बैग, ये पकड़ो मेरा आला, मेरे पीछे पीछे चले आओ, दुखियारी है कोई बाला।
3: इलाज करवा लो, इलाज, इवन वाला डॉक्टर लाए हैं, बढ़िया वाला।

0: साहब ना जल्दी जल्दी आओ।
1: जे देखो डॉक्टर साहब, जे देखो, जे रही हमारी मैडम जी।
2: हाँ ओके, मैं अभी देखता हूँ।
3: अरे मदन, किशन क्या हो गया, इतने घबराए हुए से क्यों हो? और ये साहब कौन है?
2: मैडम जी, जे मैडम, मैं आपको परिचय अपना खुद दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर SS खुराना। ये दोनों आपके शुभ चिंतक सहकर्मी मेरे पास मेरे क्लिनिक पर आए थे और इन्होंने मुझे बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
3: What?
2: और इनके अनुसार आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।
3: क्या?
2: इनकी वरीज यानी चिंता और आकुलता को हास परिहास के द्वारा थोड़ा कम करते हुए और स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए मैं बिना समय गवाए इन लोगों के साथ तुरंत चला आया। अब आप बताइए अपनी तबीयत के बारे में, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है?
3: What? मेरा ब्लड प्रेशर? ओह नो डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, फिट हूँ, फाइन हूँ, भला मुझे क्या हुआ है। बट एनीवे, आप एक पेशेंट के बारे में सोचकर तुरंत यहाँ चले आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
2: यू आर मोस्ट वेलकम।
3: और रही बात मेरी तबीयत की, तो मदन किशन, तुमसे कौन ने कही कि मेरा ब्लड प्रेशर बिगड़ गया?
1: मैडम जी, मेरे पास तो जी मदन आयो और आए थे मुझे बोलो कि मैडम जी ने मुझे कही है कि मेरे गाड़ी में ब्लड प्रेशर रहते है।
3: क्या?
1: मैंने समझी कि आपने आते जे कही होगी कि आपको ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।
3: क्या?
1: और आपको गाड़ी में बैठ के इलाज के लिए जानो है। तो हम दोनों ने जी सोची कि अगर मैडम जी आज बीमार पड़ गई तो शाम को हमारा प्रोग्राम कैसे हो भेगो। तो हमने सोची कि चौना हम ही डॉक्टर साहब को मैडम जी के पास ले आवे। बस ये ही सोच के मैडम जी हम दोनों झट थे डॉक्टर साहब के पास चले गए और उन्हें यहाँ फट थे आपके पास ले आई।
3: ओफो मदन जी, फिर से वही नादानी।
2: अब कागती आ गई मुझे।
3: अरे बाबा, ब्लड नहीं ब्रेड, ब्रेड यानी जिसे आप डबल रोटी कहते हैं। अच्छा। वो ब्रेड।
1: अच्छा।
3: हाँ, और उस ब्रेड पैकेट को मैंने आपसे लाने को कहा था। और माय गॉड मदन जी, चूंकि आपके दिमाग में ब्लड प्रेशर शब्द बैठा हुआ है, इसलिए हुआ क्या कि आप गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते ब्रेड पैकेट शब्द भूल गए और आपके दिमाग में बैठा ब्लड प्रेशर शब्द आपको याद रहा और बस इसी के चलते आपने किशन को जाके कह दिया कि मैडम जी को ब्लड प्रेशर गाड़ी में हत है, वाय दे दो। अब समझे? और किशन बाल, तुम भी उसमें शामिल हो गए। जोड़ी, आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर, मेरे लोगों की जरा सी नासमझी से आपको इतना परेशान होना पड़ा।
2: कोई बात
3: डॉक्टर, मैं दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: मिस जी शिवानी, शिवानी श्रीधर नाम है मेरा।
2: नाइस नेम। ओके शिवानी जी, चलिए कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला।
3: दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे ये सभी साथी बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं और ब्रज के ग्रामीण परिवेश का इन पर बहुत प्रभाव रहता है, मगर ये सभी ना, मदन किशन और अन्य सभी साथी मन के बहुत ही सरल और स्वभाव से बहुत भोले हैं और सच्चे ब्रजवासी हैं। बस कभी कभी छोटी मोटी नादानी कर जाते हैं।
2: इसीलिए ब्रेड को ब्लड और ब्रेड पैकेट को ब्लड प्रेशर बना देते।
3: जी।
4: अरे ना मैडम जी, मैं तो देहात को आदमी हतु, कम पढ़ो लिखा हूँ, चाहे वजह से मिस्टेक है जावे। डॉक्टर साहब मोको माफ कर दो भाई, मैं तो मूल बुद्धि को हतु। आई एम टू सॉरी वेरी साहब। डॉक्टर साहब,
2: मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरी फीस चाहिए और फीस में रुपया पैसा नहीं, कुछ गा बजा कर दिखाइए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात है तो चल ले मदन, है जा शुरू।
4: अच्छी क्या भाई किसान, हवाला।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, पेश है रांची मेलोडीज। रितेश का नमस्कार।

मैं जब भी यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता और देखता रहता इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर कि मान जी ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

वाकई ये जो जीवन है ना, चलते रहने का नाम है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, विषम हो सम हो, अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ते रहना है। जीवन चलने का नाम है।

0: लेते एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ஸ்வயம் இனி கட்டுப்படு பாரதிய சேனா.
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम रांची मेलोडीज में. आओ कि प्यार से एक नया जहां बनाए, जहां हम भी हंसे और तुम भी हंसो, सारा जग हंसे, सब तरफ खुशियां ही खुशियां हो.

बहुत नादा बनते हैं और आप पूछते हैं किसका इंतजार, इंतजार किसका है ये तो आपको पता ही है, आपने जो लगन लगाई है।

और इस कदर वो सांसों में समाए कि दिल से निकलने का नाम ही ना लेते हैं। ऐसे क्यों आई हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, ये तुम्हारा दिल जाने और मेरे दिल की पुकार तुम तक पहुंचे।

ये एहसास, ये ख्याल, ये जज्बात सब अपने अंदर समेटे हुए लोग जो चलते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। साथियों, देखते देखते रांची मेलोडीज का समय यही संपन्न हुआ जा रहा है। किसी अच्छे मोड़ पर आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें याद करते रहें। रितेश का नमस्कार।

0: साथियों, आप सुन रहे थे रांची मेलोडीज। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस पहलू पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन वायरल हो रहे उस ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर सरकार की नीतियों पर वक्ताओं ने चिंता जताई। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के का संदेश पढ़कर सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नेपाल में आई भीषण त्रासदी में लापता रांची निवासी राम प्रसाद घोष के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से बात कर लापता की खोजबीन और सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। राज्य में 2 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल रांची गुमला खूंटी, लोहरदगा और लातेहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 हुए हैं। बाल सभा कार्यक्रम सूत्रधार हैं अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।

0: जय हिंद बच्चों।
1: कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी, और फिलहाल अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ मिलकर अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे, वो भी मुस्कुराते हुए। क्यों, सही कहा ना?
2: बिल्कुल। अच्छा बच्चों, जरा सोचिए, अगर आपको किसी ऊंची इमारत की छत तक पहुंचना हो तो आप एक ही छलांग में वहां पहुंच सकते हैं? नहीं ना, इसके लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी।
1: और ठीक इसी तरह अगर हमें सफलता की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचना हो तो भी हमें सीढ़ी की जरूरत होती है, और ये सीढ़ी ईंट पत्थर की नहीं होती, ये सीढ़ी होती है मेहनत की, अनुशासन की, सीखने की। और इस सीढ़ी पर चढ़ना सिखाते हैं हमारे शिक्षक, हमारे गुरु।
2: हाँ बच्चों, सफलता की राह कभी अकेले तय नहीं होती, हमारे माता पिता हमारा हाथ थामते हैं और हमारे शिक्षक हमें सही दिशा दिखलाते हैं। हम सीखते हैं, हम गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते भी हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं।
1: और इस सफर में हमें सही दिशा दिखाते हैं हमारे शिक्षक, और उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में तब से शुरू हो जाती है जब हम विद्यालय में पहली बार कदम रखते हैं। अक्षर पहचानने से लेकर सही गलत समझने तक हमारे शिक्षक हर पल हमारा हाथ थामकर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं।
2: बच्चों, सफलता सिर्फ अंक लाने का नाम नहीं है, सफलता का अर्थ है अपनी क्षमता को पहचानना, मेहनत करना, अच्छा इंसान बनना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना।
1: और ये सारी बातें हमें हमारे शिक्षक ही तो सिखाते हैं, कभी गणित के सवालों से, कभी विज्ञान के प्रयोगों से, कभी किसी कहानी से, तो कभी अपने व्यवहार से। यानी शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाते, वे हमें जीवन की परीक्षा के लिए भी तैयार करते हैं, जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे
2: समय का महत्व समझाना, उनकी कद्र करना, अनुशासन में रहना, दूसरों का सम्मान करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और अपने गलतियों से सीखना, ये सब बातें हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है बच्चों, और हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है।
1: और पता है बच्चों, कई बार तो शिक्षक हमारी वो खूबी भी पहचान लेते हैं जिसे हम खुद भी पहचान नहीं पाते। किसी बच्चे को चित्रकारी पसंद है, किसी को खेल, किसी को संगीत, तो किसी को नृत्य, तो किसी को पढ़ने लिखने में रुचि होती है। आप सबकी भी तो रुचि होगी अलग अलग चीजों में, है ना?
2: और एक शिक्षक आप सभी बच्चों की इसी प्रतिभा को पहचानते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बच्चा खास है, अलग है, बस उसकी खासियत को पहचानने और निखारने की जरूरत है,
1: और वो भी बहुत प्यार से। बच्चों, शिक्षक हमारी कमियां बताकर रोकते नहीं, बल्कि उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना सिखाते हैं। वे हमारी मंजिल खुद तय नहीं करते, बल्कि हमें इतना सक्षम बनाते हैं कि हम अपनी मंजिल खुद चुन सकें,
2: वो भी आत्मविश्वास के साथ। और ये आत्मविश्वास भी हमारे भीतर उन्हीं के शब्दों से तो आता है बच्चों। जब हम हार जाते हैं, किसी काम या परीक्षा में असफल होते हैं, तो वही तो कहते हैं, कोशिश करते रहो, अगली बार जरूर सफल होगे।
1: यानी वे असफलता से लड़ना सिखाते हैं बच्चों। जब वे कहते हैं ईमानदारी से काम करो, तो वे हमारे चरित्र की नींव मजबूत करते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है बच्चों।
2: हाँ बच्चों, आपने ये ध्यान दिया है कि आपके शिक्षक आपसे ये नहीं पूछते कि आप क्या हैं, हमेशा ये पूछते हैं कि आगे चलकर बड़े होकर आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, है ना?
1: क्योंकि उनको विश्वास है आप पर। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा नहीं बल्कि अपने से बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं।
2: बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
1: यानी गुरु में सृजन, पालन और परिवर्तन तीनों शक्तियां मानी गई हैं। वे हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं बच्चों, हमारी प्रतिभा को संवारते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, हमारे गुरु।
2: इसलिए जब कभी भी कोई शिक्षक आपकी गलती पर आपको समझाए तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, और अगर कभी डांटे तो बुरा न माने, क्योंकि उनकी डांट के पीछे भी आपकी भलाई ही छिपी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया, और गुरु के महत्व को कबीर दास जी ने कितनी सुंदरता से कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
2: हाँ, अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों बच्चों, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं।
1: तो बच्चों, अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए, उनकी सीख को अपने जीवन में उतारिए और अपनी सफलता की हर सीढ़ी में उनके योगदान को याद रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए।
2: और शिक्षक के प्रति सम्मान केवल उनके सामने हाथ जोड़ने या प्रणाम करने से नहीं होता बच्चों, उनकी सीख को अपने व्यवहार में उतार कर बेहतर इंसान बनना ही उनके प्रति सच्चा सम्मान है।
1: और बेहतर इंसान बनने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है बच्चों, और वो है दूसरों के लिए कुछ करने का भाव, दूसरों की मदद करना।
2: और दूसरों की मदद करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों या हम कोई बहुत बड़ा काम करें। कई बार हमारी छोटी छोटी सी मदद भी किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकती है बच्चों।
1: बिल्कुल, मदद छोटी हो सकती है बच्चों, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। बच्चों, हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि बड़े बदलाव की शुरुआत कई बार एक छोटी सी मदद से होती है। और किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़ी ताकत या बहुत सारा धन नहीं चाहिए, जैसा कि भैया ने कहा, जरूरत होती है बस संवेदनशील मन और मदद के लिए बढ़े हुए हाथ की। और ये आप सब भी कर सकते हैं बच्चों, अपनी छोटी छोटी कोशिशों से, जैसे किसी का मजाक उड़ाने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं।
2: किसी जरूरतमंद को देखकर आगे बढ़ जाने के बजाय जितना संभव हो उतनी मदद करें। अपना समय देना, अपना ज्ञान बांटना, अपने दोस्तों या जरूरतमंदों के साथ भी अपनी चीजें साझा करना, किसी को सहारा देना, ये सब मदद के ही रूप हैं बच्चों।
1: पशु पक्षी को परेशान न करना, अगर उन्हें चोट लगी हो तो बड़े को बताना, ये भी तो मदद है बच्चों। और घर में भी अपना काम खुद करना, माता पिता का सहयोग करना, दोस्त की जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहना, ये सब भी तो मदद ही है। और इन सारी बातों के साथ सबसे जरूरी है बच्चों, किसी की मदद करके उसका एहसान न जताएं, क्योंकि सच्ची मदद वही है जिसमें दिखावा नहीं अपनापन होता है।
2: तो याद रखिए बच्चों, किसी की मदद करने के लिए उम्र बड़ा होना जरूरी नहीं है, मन बड़ा होना जरूरी है। और एक छोटी सी मदद किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है।
1: और एक छोटा सा अच्छा व्यवहार किसी का दिन बदल सकता है बच्चों, और छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है।
2: तो बातें तो होती रहेंगी दीदी, लेकिन अभी बच्चों का मनोरंजन करवाना चाहिए, और बच्चों का मनोरंजन करवाते हैं हम एक बाल गीत सुनाकर।
0: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?

0: राजा को आते रानी सुनी न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: बच्चों कैसा लगा आपको ये बाल गीत? अच्छा लगा ना? अब आपकी बारी है।
2: तो बच्चे भी तैयार बैठे हैं दीदी कुछ सुनाने के लिए, तो चलिए सुनते हैं उनसे।
1: बिल्कुल।
2: क्या नाम है आपका?
3: प्रणिका सिन्हा।
2: प्रणिका आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
3: 1B।
2: 1B में?
3: यस।
2: प्रणिका आपको क्या अच्छा लगता है?
3: ड्राइंग करना एंड खेलना कूदना।
2: और गाना भी अच्छा लगता है आपको?
3: हाँ।
2: तो आज आप अपने बाल मित्रों को क्या सुनाने जा रही हैं?
3: 8 मात्रा कहरवा ताल में भजन।
2: 8 मात्रा कहरवा ताल में आप भजन सुनाने जा रही हैं। चलिए सुनाइए।

0: हरी।
1: वाह, बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा। आप कहाँ से सीखती हैं?
0: मैं अपने दादाजी से सीखती हूँ।
1: अपने दादाजी से सीखती हैं?
0: हाँ।
1: वाह, आप कितने दिन से ये भजन या गाना सीख रही हैं, म्यूजिक सीख रही हैं?
0: 3 महीने।
1: 3 महीने से। तो संगीत आपको कैसा लगता है?
0: संगीत मुझे बहुत पसंद है।
1: क्यों?
0: क्योंकि उसमें एक आवाज ही नहीं होती है, सबकी दिल की धड़कने भी होती है, वो सबसे अच्छा गाना होता है।
1: और आप क्या सुनाएंगी आज?
0: वो जाग मुसाफिर भोर भाई
1: सुनाइए।

0: करते हैं।
1: वाह, बहुत खूबसूरत भजन और बहुत अच्छी आवाज, बहुत लय और सुर के साथ आपने इसे प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ये बताइए कि पढ़ाई के साथ संगीत को कैसे आप मैनेज करती हैं, कितने देर आप अभ्यास करती हैं?
0: टोटल मेरे पापा कहते हैं आधा घंटा, और मैं कभी कभी थोड़ा सा ही सीखती हूँ, मगर मैं सीखती हूँ ज्यादा। मगर
1: मतलब आप आधे घंटे रोज प्रैक्टिस करती हैं?
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन पढ़ाई का भी तो होमवर्क रहता होगा।
0: मैं स्कूल से आती हूँ, उसके बाद मैं अपना ये करती हूँ, क्या बोलते हैं, मैं अपना
1: होमवर्क
0: करती हूँ, उसके बाद गाना करने बैठ जाती हूँ।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैम आती है ट्यूशन वाली, उसके बाद फिर मैं ट्यूशन वाली मैम को अपना होमवर्क चेक कराती हूँ, मैम पढ़ाई करवाती है, स्कूल का एग्जाम है, स्कूल से मैं वापस आती हूँ, उसके बाद से सीधे होमवर्क वगैरह और ये क्या बोलते हैं गाना।
1: क्या आप सोचती हैं कि आगे चलकर म्यूजिक में आप क्या करना चाहती हैं?
0: आगे चल के म्यूजिक में एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ।
1: बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं? वाह, बहुत अच्छा। अगर आप इसी तरह से मेहनत करती रहीं और ईमानदारी के साथ अभ्यास करती रहीं तो निश्चित रूप से आप बड़ी सिंगर बनेंगी।
2: भैया, अब बच्चों को कुछ जानकारी भी देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और आज हम एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं बच्चों आपसे, और वो बात है प्लास्टिक की। आप लोग रोज प्लास्टिक देखते होंगे, है ना? बाजार से सामान लाने वाली थैली, पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट, खाने के डिब्बे और ऐसी बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक होता है।
1: अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि प्लास्टिक तो हमारे बहुत काम आता है, फिर इसे हटाने की बात क्यों की जा रही है। तो बच्चों, प्लास्टिक काम का जरूर है, लेकिन जब हम इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इसे कहीं भी फेंक देते हैं, तब हमारे लिए ये बड़ी परेशानी बन जाता है।
2: बिल्कुल भैया, हम अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों।
1: और आपने देखा भी होगा बच्चों कि कई बार सड़क के किनारे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी रहती हैं, नालियों में प्लास्टिक फंसा रहता है, बारिश होने पर नालियां बंद हो जाती है और पानी सड़क पर जमा होने लगता है, गंदगी फैलती है और आसपास का माहौल खराब हो जाता है।
2: और सबसे बड़ी बात तो ये है, प्लास्टिक जल्दी खत्म नहीं होता, ये गलता नहीं। हम कागज का टुकड़ा फेंकते हैं तो वो समय के साथ मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पड़ा रह सकता है बच्चों। यानी आज हमने जो प्लास्टिक थैली फेंकी वो इतनी जल्दी धरती से गायब नहीं होने वाली।
1: अब जरा जानवरों के बारे में भी सोचिए बच्चों, सड़क पर घूमने वाले गाय या दूसरे जानवर जब कूड़े में खाना ढूंढते हैं तो कई बार खाने के साथ प्लास्टिक भी खा लेते हैं, इससे वे बीमार हो सकते हैं और उनकी जान तक जा सकती है। क्या हमें ऐसा करना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं।
2: और इसके साथ साथ प्लास्टिक नदियों और तालाबों में पहुंच जाए तो पानी भी गंदा हो जाता है बच्चों। पानी में रहने वाले जीवों को भी इससे नुकसान होता है। यानी प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली भी अगर हमने कहीं फेंक दी तो वो घूमते घूमते बहुत दूर तक जा सकती है और प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है।
1: तो अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना?
2: बिल्कुल।
1: सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। बार बार नई प्लास्टिक की थैली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, पानी पीने के लिए बार बार इस्तेमाल होने वाले बोतल को हम रख सकते हैं। कई बार नई प्लास्टिक की बोतल खरीद कर उसे फेंकने की जरूरत नहीं है।
2: और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कूड़ा कभी सड़क पर, नाली में, पार्क में या नदी तालाब में नहीं फेंकना चाहिए बच्चों। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और हाँ, सिर्फ खुद ही इन बातों का ध्यान रखना काफी नहीं है, अपने घर में मम्मी पापा को भी प्यार से समझाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि प्लास्टिक को इधर उधर फेंकना कितना नुकसानदायक है।
1: अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हम तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन बच्चों, याद रखिए कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटी सी शुरुआत से होती है। अगर एक बच्चा प्लास्टिक की थैली लेने से मना करता है, फिर उसके 10 दोस्त भी ऐसा करते हैं और धीरे धीरे पूरा स्कूल ऐसा करने लगता है, तो सोचिए कितनी सारी प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल होने से बच जाएंगी।
2: आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा अभियान भी चला सकते हैं बच्चों। पोस्टर बना सकते हैं, नारे लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ।
1: प्लास्टिक को ना कहो, कपड़े के थैले को हाँ कहो।
2: और कूड़ा इधर उधर मत फैलाओ, अपनी धरती को स्वच्छ बनाओ।
1: बच्चों हमें यह समझना होगा कि धरती सिर्फ हमारी नहीं है। इस धरती पर पेड़ पौधे पशु पक्षी न जाने कितने जीव रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी इसी धरती पर रहना है
2: और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सफाई रहे, पेड़ पौधे हरे भरे रहें, नदियाँ और तालाब साफ रहें और जानवर सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा बच्चों।
1: तो आज से एक छोटा सा काम शुरू करते हैं बच्चों। जब भी बाजार जाएंगे अपना कपड़े का थैला लेकर जाएंगे, प्लास्टिक की बोतल और दूसरी चीजों का बेवजह इस्तेमाल नहीं करेंगे, कूड़ा कहीं भी नहीं फेंकेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे।
2: याद रखिए बच्चों, धरती हमारी माँ जैसी है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपनी धरती को भी साफ रखना चाहिए। और आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें,
1: न प्लास्टिक फैलाएंगे न दूसरों को फैलाने देंगे,
2: अपनी धरती को साफ रखेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे।
1: क्योंकि जब धरती सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो बोलिए बच्चों, प्लास्टिक हटाओ
2: और धरती बचाओ।
1: तो बच्चों कैसी लगी ये जानकारी? बहुत अच्छी जानकारी थी ना? तो ये जानकारी आप दूसरों तक भी फैलाइए। और हाँ बच्चों, हम हर हफ्ते किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: बच्चों जब हम किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि वो आगे चलकर कितना बड़ा बना, हमें ये भी देखना चाहिए कि उसने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और किन परिस्थितियों में आगे बढ़े। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें इसी बात की बहुत अच्छी सीख देता है बच्चों।
1: बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और आज तमिलनाडु में है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सितम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे बच्चों और उनका परिवार साधारण परिस्थितियों वाला था।
2: बच्चों राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तिरुतनी में प्राप्त की और बाद में तिरुपति के स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर में शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया।
1: वे पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थी थे बच्चों। उनकी शैक्षिक योग्यता के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान कई छात्रवृत्तियां भी मिली और यही बात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रेरक पक्ष है। साधारण पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के बल पर आगे पढ़ते गए।
2: राधाकृष्णन के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शुरू में दर्शन शास्त्र पढ़ना अपनी पहली पसंद के रूप में नहीं चुन रहे थे। वे गणित पढ़ना चाहते थे लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके एक रिश्तेदार ने अपनी दर्शन शास्त्र की किताबें उन्हें दे दी। इन्हीं किताबों से उनका दर्शन शास्त्र की ओर गहरा जुड़ाव शुरू हुआ।
1: उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसी विषय के महान विद्वान भी बने। उनकी ये विद्वता आगे चलकर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गई बच्चों।
2: ये प्रसंग आपको एक बहुत अच्छी सीख देता है बच्चों कि कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ हमारी पसंद का रास्ता बदल देती हैं, लेकिन अगर हम उस रास्ते पर मेहनत और लगन से आगे बढ़ें तो वही रास्ता हमारी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है बच्चों।
1: पढ़ाई पूरी करने के बाद राधाकृष्णन ने अध्यापन का क्षेत्र चुना। उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाया और आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे केवल एक शिक्षक नहीं थे बच्चों, बल्कि ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया।
2: बाद में वे आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति पद संभाला। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया बच्चों।
1: बच्चों डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उन्हें महान शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में योगदान के सम्मान में भारत में इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की याद दिलाता है।
2: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन हमें ये नहीं सिखाता कि सफलता केवल अच्छे साधनों से मिलती है, बल्कि उनका जीवन बताता है कि ज्ञान की इच्छा, मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है।
1: उनके जीवन से हम चार महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं बच्चों। पहली, परिस्थितियाँ कठिन हो तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।
2: दूसरी, छात्रवृत्ति और मिलने वाले अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए।
1: जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसे केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि समझने और सीखने के लिए पढ़ना चाहिए।
2: और एक अच्छा विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छा शिक्षक और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सकता है।
1: इसलिए बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन की कहानी को केवल एक महान राष्ट्रपति की कहानी मत समझिए। यह एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जिसने साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की, शिक्षा को अपने सबसे बड़ा साधन बनाया और आगे चलकर भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और राष्ट्रपति बने।
2: उनका जीवन हमें यही संदेश देता है बच्चों कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा कभी छोटी नहीं होनी चाहिए।
1: तो आप समझ गए बच्चों, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हमें अपने पर विश्वास रखना है और विकास करना है। तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो बच्चों से अब हमें विदा लेनी होगी। तो चलते चलते हम आपको बता दें बच्चों कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
3: जय हिंद बच्चों।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 500 49 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। 5:30 का समय होगा श्रमिक लोक कार्यक्रम का। शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित किए जाएंगे। छह बजकर 2 मिनट पर खेतीबारी, 6:30 पर हमारी दुनिया। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:11 पर जिले में आजकल, 7:15 पर संथाली समाचार पत्रिका का प्रसारण किया जाएगा। आज शाम 7:30 हमारे दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जो भारत और इंग्लैंड के बीच, क्षमा कीजिएगा, जो भारत और थाईलैंड के बीच खेला जा रहा है का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म अंजाम के इस गीत के साथ। गायक गायिका है पूर्णिमा, बोल समीर के हैं और संगीत है आनंद मिलिंद का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से, गायिका है कविता कृष्णमूर्ति।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रोजा से। इसे गाए है एसपी बालसुब्रमण्यम ने, संगीत एआर रहमान का है और बोल हैं पीके मिश्रा के।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म ताल से। गाए इसे गाए है अनुराधा और सोनू निगम ने, संगीत ए आर रहमान का है।

0: ढलान वाली जमीन है, बेचो से।
1: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है।

0: itu jalan ketiga itu jauh bawa.
1: Iya ini sete joko jana ku dorkaro samayre kana mordo ekka dukuge chirgelo.
0: Iya.
1: Ini sete joko jana arjeng fight gear do trang. Si jomtan reo si jana reo. Suku sanangkan reo si jana kering kan hisepte kering bayo men hisepte.
0: Iya.
1: Iya en samay do पेपर आटिंग तो पूरे तो पैसा का तो कहाँ ना मौत ना एक महीने रे 500 रुपये ना मौत आएगी ना
0: अच्छा
1: इन्हीं से तीन पाइट के अंदर आएगी ना आंधो आलिंग इन्हीं रूम ट्रिंग पाइट आएगी ना ची दो तीन महीने लेकर तो हो काका जी बिल गेट आएगी ना आलिंग है जुड़ी वो ची आती को ये पेपर आटिंग है मंदे तीन
0: अच्छा
1: या तीन महीने लेकर तो जाया को कुछ चिल्ले से ऐसे कि ना चना चना पे कुछ चिल्ले चिल्ला ची मर नहीं तो ची नहीं ची के मिलते नहीं मिल हेलो का हेलो आ लोगों को ना ऐसे ना मिलते को ऐसे को सुबह तो कुछ चिल्ले के नहीं चाहिए कि ना चना पे
0: अच्छा ठीक है
1: या
0: इन तो पढ़ाओ तो चीन जकलं
1: पढ़ाओ के ना अन को काजी नॉए चिमा रोनु रुदान तो वो जो को अबू नीन मारंगे ने से तो अबू लो तो जुड़ी गाती के लो तो काबू दे ये उन्हों कान को दो साबिन को जो को ना को होरिंग के ते को उन्हों को मनिया है उन्हें उम्र तो को कम नहीं ते को होगा जो को ना तो को मनिया है इनसे तालिंग हो आने से लिंग पड़ा हो रहे के ना देखना चाहना तो
0: अच्छा
1: या या
0: तो अपना चिमिन जो कलंग पड़ा जाना
1: ना तो अलिंग ने 12 पास किया तो मैं आने कल गया ना अलिंग एडमिशन को तो कलेंगे देख रहे
0: अच्छा ठीक है इन दो सारा असर बुझा तो इनकी आ उन्होंने तो ओके अजीत बनते ना तो बन पाए थे कि ना
1: अलिंगों ने अलका अलिंग आर तंबोलिंग ताईकन ताईकन ना रोमलिंग इडले तो ना देते कलोगे इन दो एनी रोमलकिन होंगे नहीं वो आयर सारा सार को ये तो वाम ताई की ना आलिंग तो नहीं ये नॉन नहीं हो जो सिनो वाम इन दो इमिन दो हिम्मत के का हिम्मत हो ची मार्लिंग सिनो चिलिंग कुदीर का को ची चिलके आलिंग वाले ये तो था इन ची काम इनले कहा बहुत एक इधू को आलिंग दो की ये तो लिंग ची कागे मिलने का काजी को बहुत एक ना मन को दे ये ना के हो जो ताई की ना अंदो ओ आलिंगो पूरे दिन ऐसे रे कहा वाले ताई की नहीं सकते जो को बोरो के चिरके रहते कि नहीं इधू ओके के तो कुआ ची को ये तो कुआ इधर चीने को कुली लिया ची मिलने का बोरो को ताई होता है इकना
0: या या
1: इन्दो इन्हीं आलिंगे मालकी नॉन इन्दो ताई कना जो पेपर है ने चीने काल को ची धवालन ताई कना एसोसिएशन ग्राउंड पार है
0: या
1: इन्दो अखिये पोटोरल के ते आलिंगो आखिंग दिन कुली नाम के टुकड़ी ताई कना ची चील के इन्दो आलिंगों के ड्राइंग ची काम ले करते इन तकिंग अलग दर ले लिंग ताई कना इन तकिंग आलिंग उकिंग एडिशन इच्छा लिंग ताई कने इन्हें ते आलिंग पुरु मुट्ठन मी सेतार लिंग सेनो ते कने इमिन रासा ये तो उन तो ताई कना ची सेतार मांडी जोम क्या तो आंधो मांडी ईडी क्या तो लिंग सेनो ताई कना अद आई उरना मी सिंगे पाइट ते लकली मंजू ताई कना यार इनके ते आलिंग वकली समझाना
0: चने सारा सर खुद अपने तलंग करिंग बेटा अपने चिलके तलंग तो बेटा अपन सारा सर ते
1: आयर तो अब नेपाल रे आलिंग हो उन्हीं समय को तो उन्हें को उन्हें क्या ना ची अब इन काजी कर लेका ची मार वही को थोड़े ची चीनी को मिल लेका
0: ये
1: इन दो इन पालिंग से नंत तो कोई तो कर लिंग ची का नेल का हुआ हुआ इन दो इन दो आज उस उम्र या दो जो कब ने ना वो बदल के तो वो मतलब वो ये तो ना ना तो कोमनिया इन्ते నేను ఆకు చిల్కే నా చిన్న యూనియా నా 30 మీటర్ డిస్టెన్స్ తయ్యూ తయ్యూ ఏదో ఫిక్స్ గియా
0: అచ్చా
1: ఓ ఎందరే ఆరుదో మాస్టర్ తకింగ్ ఆరుదుకో తీన్ మెనల గబ్బర్రో వచ్చికెళ్ళింగ్ అచ్చి మన నేను పేదవు పేదవు బయలే తో బావ ఎనగబు తాయి దయ్యే పడిగిటంగ
0: అచ్చా
1: ఇయా తీన్ మెనల రబ్బర్రో కెంత అయికిన అంతే చన్నాబు నా अकुमनिया ची ना मणिपुर है तो को मंगवाए को मने इन पारे हम तो कोई केड़े नो के ताई कुमनिया
0: ये
1: इन पाए तो को मंगवाए लेने ताई की ना आंडो इन तें अलग ते पैसा हो ची खाता ही की ना इन तें 4,000-3,000 ते बो ना मोते ही की ना
0: अच्छा
1: आंडो इन तें अलग ते इमिन पैसा हो खाता ही

0: challenge in bowling green da ye
1: yeah
0: in pe o khaling ka aling te ka ta ikna
1: paisa ta
0: you know paisa kuling udar len ta ikna you know 5 6 mahine le ka hoga na
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस समय संध्या के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, आपके खतों पर आधारित कार्यक्रम आपने लिखा।

0: कार्यक्रम आपने लिखा, लिखने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, जोहार श्रोताओं।
0: जोहार,
1: मैं हूँ

0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं संगीता
1: और
0: मेरे साथ है
1: मैं हूँ छवि।
0: नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि आज का ये कार्यक्रम आधारित है आपके खतों पर।
1: जी संगीता जी, आपने लिखा जो श्रोता है उनका इंतजार खत्म हुआ और कार्यक्रम जो हम इसको शुरू करते हैं हमेशा महीने के अंत में खत लेते हैं
0: जी।
1: तो बहुत सारे श्रोताओं ने खत लिखा है, उन्हें बहुत कुछ जानना है, कुछ प्रशंसा है, कुछ नाराजगी है, कुछ सलाह है
0: जी।
1: तो श्रोताओं के खत पढ़ना शुरू करें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो संगीता जी, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो खत मुझे मिला है
0: जी।
1: वो है नलिता जी का। ये हमें जोहार कर रही हैं और लिखती हैं, अनामिका जी लिख रही हैं कि आपके केंद्र से जो
0: सबसे पहले छवि जी, अनामिका जी को हम उनके जोहार का जवाब देते हैं। जोहार अनामिका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें खत लिखने के लिए। तो छवि जी, इन्होंने

0: लिखा है?
1: हाँ वही मैं बता रही थी आपको कि इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से वर्ग चार में पढ़ रहे, जब वो पढ़ रही थी वर्ग कक्षा में चार में, उसी समय से वो सुन रही है रेडियो हमारे चाईबासा केंद्र को, और उन्हें नन्ही दुनिया कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और उनकी सहेलियां भी कभी कभी सुनती हैं और उनके पिताजी तो रोज समाचार सुनते हैं और खेती बाड़ी का जो कार्यक्रम होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: और सबको उन्होंने प्रणाम कहा है
0: जी। हमारा भी बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम आप सभी श्रोताओं को जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं उन सभी को। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है छवि जी कि ये हमारा कार्यक्रम सुनती हैं और छोटी बच्चियां अगर इस कार्यक्रम को सुनती हैं तो ये और भी अच्छी बात है।
1: संगीता जी इन्होंने कहा कि ये जब कक्षा चार में थी तभी से सुन रही है, मतलब अब बड़ी हो चुकी है।
0: जी जी, तभी इनका जो पसंदीदा कार्यक्रम है नन्ही दुनिया है।
1: जी,
0: और हम आपको बताया अनामिका जी, नन्ही दुनिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप सुन सकती हैं हमारे यहाँ से। कार्यक्रम विविधा एक हमारे यहाँ से हुआ करता है जो आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर हुआ करता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अन दिनों तो आपकी स्कूल होती होगी लेकिन जिस दिन आपकी स्कूल से छुट्टी हो आप सुबह के 9 बजे इस कार्यक्रम को जरूर सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा
1: जी। संगीता जी अगला खत है विष्णु, मीरा, मधु, विकास, सुधा, गुरुवार इनको
0: जी,
1: और मदन का, ये ग्राम बंगला टोली से है
0: जी।
1: इन्होंने तो सबसे पहले आशा दीदी और मंजू दीदी को नमस्ते कहा है
0: जी।
1: जी तो हम भी आशा दीदी और मंजू दीदी को नमस्ते कर लें।
0: जी जी नमस्ते, हम आपका पहुंचाएंगे जरूर आशा दी और मंजू दी तक। लेकिन नमस्कार पहुंचाने से पहले श्रोताओं हम आपको बता दें कि आशा दी और मंजू दी जो पहले इस कार्यक्रम को किया करती थी अब आप उनकी आवाज इस कार्यक्रम में नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो दोनों ही इस केंद्र से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। लेकिन हम आपके नमस्कार को और प्रणाम को उन तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: जी हाँ, और इन्होंने आगे लिखा है कि आकाशवाणी चाईबासा से प्रसारित हिंदी बंगला दोनों प्रोग्राम में लोग सुनते हैं, पूरा परिवार सुनता है इनका
0: जी।
1: और सात रंग में कुछ अच्छे भेंटवार्ता इनको बहुत अच्छा लगता है सुनना उनको, और उन सुनने का उनको मन करता है। सुंदर प्रस्तुति के लिए उन्होंने चंपा दीदी, रुद्राणी और मुनमुन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है
0: जी।
1: इनके अलावा हिंदी में समाचार के साथ साथ वो लोग जो सुनती है मनोरमा, किसानवाणी, खेती गृहस्थी, हम लोग हमेशा सुनते हैं, उन्होंने लिखा है
0: जी जी।
1: और इनसे उन्हें अच्छी जानकारी मिल जाती है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे कार्यक्रमों को सुनती हैं
1: जी।
0: और हम आपका नमस्कार और आपने जो भी अपना प्यार भेजा है हमारे बांग्ला प्रोग्राम की जो उद्घोषिकाएं हैं उनके लिए, तो हम आपका प्रणाम और प्यार उन तक जरूर पहुंचाएंगे। उन सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए और आगे भी ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहा कीजिएगा
1: जी। हाँ तो संगीता दी आगे हम बढ़ते हैं
0: जी।
1: और एक खत है हमारे एक पुराने श्रोता का, उनके बारे में हम बता दें आपको
0: जी।
1: ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम माथुर
0: जी।
1: इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी चाईबासा की स्थापना से अब तक वो जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह वो अपनी फरमाइश भी भेजते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी नए पदाधिकारी आए उनसे मिले, उनको बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: और वो हमेशा चाहते हैं कि चाईबासा का जो भी प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा जाए
0: जी बिल्कुल।
1: और सुबह का कार्यक्रम वो जोहार चाईबासा जरूर सुनते हैं, गीतों के बारे में वो लिखते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है
0: जी।
1: वो सभी श्रोताओं से भी मिले हैं, मतलब जुड़े हुए हैं
0: जी जी।
1: और वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी बात वो कहें उनकी बात पूरी हो, इस आशा के साथ उन्होंने खत लिखा है
0: जी।
1: और ये भी लिखा है साथ में कि उन्हें राधा रानी दे और संगीता शर्मा की प्रस्तुति बहुत भाती है
0: जी।
1: और उनके पेश करने का अंदाज उन्हें बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और वो और भी चाहते हैं कि मतलब ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें श्रोता भी शामिल हो, उनका ये कहना है
0: जी जी। तो सबसे पहले हम भोला राम मधुर जी को जो हमारे सबसे पुराने श्रोता में से एक है, हम उन्हें अपना नमस्कार देना चाहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए और राधा जी तक आपकी द्वारा जो उनकी प्रशंसा की गई है हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और दूसरी प्रशंसा जो आपने संगीता शर्मा के लिए की है वो आपके साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए हमें। हम चाहेंगे भोला राम जी कि आप ऐसे ही हमें खत लिखते रहें, चाहे वो शिकायत हो चाहे वो प्रशंसा हो, आपका जो भी सुझाव हो आप जरूर लिखें। और आपने जो बात कही है कि पहले जो कार्यक्रम होते थे वो अब बंद हो चुके हैं और आप नए कार्यक्रमों को चालू करने की बात कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें मधुर जी कि हमारे केंद्र में अब एक नए पदाधिकारी आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे पदाधिकारियों की कमी थी, इस वजह से कार्यक्रम नहीं जा रहे थे, लेकिन अब हम आपकी इस बात को जरूर हमारे पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे और हम पदाधिकारी हमारे कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी मांग है हम उनको पूरी करें और जल्दी से जल्दी हम इस पे काम करें। हम इसके आपको आश्वासन देते हैं, अभी तो हम यही कह सकते हैं, पदाधिकारी तक आपकी बात जाएगी फिर
1: जी
0: हम,
1: हाँ। जी तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया संगीता जी, और मधुर जी को भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी आशा करती हूँ।
0: जी हमारी तो, पूरी कोशिश रहती है कि हम हाँ। अपने श्रोताओं की इच्छा को पूरी कर सके।
1: जी हाँ, खत जी। तो बहुत सारे हैं और मैं चाहूंगी कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए।
0: जी जरूर, तो आइए श्रोताओं हम आपका मनोरंजन करते हैं अब इस गीत के साथ।

0: छवि जी, इस गीत के साथ हमने हमारे श्रोताओं का मनोरंजन किया।
1: जी जी, मनोरंजन बहुत जरूरी है संगीता जी।
0: जी, इससे क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा तरोताजा
1: हाँ,
0: हो जाता है।
1: हाँ, और याद भी तरोताजा हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो छवि जी, आइए अब इसके बाद कुछ जरूरी संदेश है हमारे पास, वो भी सुन लेते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपने लिखा में।
1: जी, तो संगीता जी, मैं अगला खत पढ़ रही हूँ, हुकुम कर्मकार जी का। ये बेडी मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं।
0: जी,
1: इन्होंने आकाशवाणी चाईबासा को सादर प्रणाम कहा है, नमस्कार कहा है, और उन्होंने कहा है कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद शानदार होते हैं, जिसमें मुख्य कारण आपके द्वारा प्रस्तुत करने का जो फन है
0: जी,
1: वो सबसे खूबसूरत होता है
0: जी।

0: खासकर फरमाइश वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे आपकी पसंद रजनीकंधा, जिसमें श्रोताओं की मनपसंद को पत्रों के माध्यम से आप बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत कर और रोचक बनाते हो
1: जी।
0: किंतु न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रमों की आवाज काफी कम होने के कारण हमें सुनने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कृपया इन समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द करने की कृपा करें। और फिर से उन्होंने पूरे चाईबासा आकाशवाणी की टीम को अनेकों अनेक धन्यवाद दिया है और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं।
1: जी जी छवि जी, तो सबसे पहले हम हमारे श्रोता हुकुम कर्मकार जी को आकाशवाणी चाईबासा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे
0: जी, जी।
1: और उससे भी पहले कहेंगे उन्हें हम अपना नमस्कार
0: जी।
1: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमारे यहाँ केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ के उद्घोषकों का इस कार्यक्रम को पेश करने का अंदाज
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: हुकुम कर्मकार जी, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो खत लिखते हैं ना, ये खत हमारे लिए प्रेरणा होती है कि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छा कार्यक्रम लेकर आए और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे आज आपने खत लिखा है वैसे ही आगे भी आप खत लिखते रहिए और खत में न सिर्फ आप हमारी प्रशंसा लिखें बल्कि आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें और कोई शिकायत हो तो वो भी जरूर लिखें। और जैसा कि आपने ये कहा कि हमारे केंद्र से जो न्यूज़ ऑन AIR पे आप कार्यक्रम सुनते हैं और उस पे आपको आवाज़ में कमी पाई जाती है, तो हमने आपकी ये बात पहले ही हमारे तकनीशियन जो होते हैं यहाँ पे इंजीनियर, उनको हमने कह चुके हैं ये बात और उन्होंने कहा है कि इनकी तरफ से लेवल जो होता है न्यूज़ का जितना जाना चाहिए उतना ही जा रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई दिक्कत हो या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने आपकी ये बात उन तक पहुंचा दी है और अगर आगे भी आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नज़र आती है और तो आप हमें ज़रूर मैसेज करके या फिर फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं ताकि हम इस आपको जो ये समस्या आ रही है उसका हम निपटारा कर सकें। और हमें बहुत बहुत खेद है इस बात का कि आपको हमारे यहाँ से आवाज़ में कमी की समस्या सुनाई होती है।
0: जी हुकुम कर्मकार जी, आशा करती हूँ अब आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी और ना शिकायत करने का मौका देंगे
1: जी।
0: कोशिश करिए नेटवर्क अगर सही है तो आप कार्यक्रम को अच्छे से सुन सकेंगे
1: जी। जी
0: जी। और संगीता जी, अगला खत मैं पढ़ रही हूँ राजेश सोनी जी का। ये बेरडी जिला पाढ़ूना मध्य प्रदेश के श्रोता है हमारे
1: जी।
0: इन्होंने आकाशवाणी चाईबासा को सप्रेम नमस्कार कहा है
1: जी।
0: और उन्होंने कहा है कि आपके केंद्र से सभी प्रोग्राम को हम निरंतर सुनते आ रहे हैं
1: जी।
0: सभी प्रोग्राम अच्छे और कर्णप्रिय होते हैं
1: जी।
0: लेकिन आपके प्रोग्राम हम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, इनकी भी यही मुश्किल है
1: जी।
0: और आपके चाईबासा केंद्र की आवाज़ मोबाइल पर बहुत कम आती है जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सभी प्रोग्राम हम मन लगाकर सुनते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आपके केंद्र से फोन इन प्रोग्राम शुरू किया जाए। आपके सभी टीम के सदस्यों को हमारी ओर से फिर एक बार भविष्य की उज्जवल कामना के साथ नमस्कार
1: जी। तो राजेश सोनी जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार खत लिखा है। फरमाइशी कार्यक्रम में आपका खत हमेशा आता है और हम आपके खत को शामिल भी करते हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें खत लिखने के लिए। और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले सारी कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय लगते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो कार्यक्रम यहाँ से पेश करते हैं वो आपके पसंद आए और आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आए। और इनकी भी वही परेशानी है, उन्होंने यही लिखा है कि उन्हें हमारे स्टेशन से केंद्र से आवाज़ कम सुनाई देती है, तो इसके पहले वाला खत भी इसी समस्या को लेकर था। तो हमने आपको बताया राजेश जी कि हमने आपकी समस्या की जो आपने की है शिकायत उसकी बात आगे तक पहुंचा दी है और कोशिश रहेगी हमारी कि अब आपको ये इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ से सुन सकें और आपको सही आवाज़ आए। और अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें फ़ोन करें या फिर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं।
0: फोन इन कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसकी भी शुरुआत होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो इस बात को हम अपने पदाधिकारी तक जरूर पहुंचाएंगे। और जैसा कि हमने अभी इससे कुछ पहले भी आपको बताया था कि हमारे नए पदाधिकारी आ चुके हैं और हम आपकी ये बात जरूर उन तक पहुंचाएंगे और हम आशा करते हैं कि जल्द ही आपकी इस समस्या का समाधान भी होगा और आप हमारे केंद्र से नए नए कार्यक्रम का आनंद और भी ले पाएंगे।
0: तो संगीता जी, बहुत सारी खतों को हमने पढ़ा और धीरे धीरे अभी समय भी आ रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि श्रोताओं, जो भी शिकायतें हैं, आपकी सलाहें, आप जरूर खत के द्वारा हमें भेजें। हमें बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा और जब आपकी फरमाइशी गीतों का खत आता है उससे हम तो खुश होते ही हैं
1: जी, जी।
0: और साथ ही जब आप प्रशंसा करते हैं या कोई भी सलाह देते हैं तो इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जितने भी हमारे उद्घोषिका है या उद्घोषक है वो सभी बहुत खुश होते हैं और इंतजार रहता है कि आप हमारी प्रशंसा करें, आप हमें सलाह दें या हमारी निंदा करें। शिकायतों का भी इंतजार हमें रहता है बेसब्री से।
1: छवि जी, हम जो कहते हैं कि आप शिकायत कीजिए, शिकायत कहने से मतलब हमारा ये होता है कि आप हमारा कार्यक्रम सुनिए।
0: जी जी जी बिल्कुल जी,
1: वो कार्यक्रम सुनेंगे तो ही तो हमारी शिकायत या प्रशंसा करेंगे।
0: हाँ।
1: और ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये शिकायत करते हैं, इसका मतलब हमें सुनते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, सभी श्रोताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि आपको हमारे यहाँ से कोई शिकायत ना मिले, कोई समस्या आपको हमारे केंद्र से ना मिले। तो क्योंकि आप जो हमें खत लिखते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और हम पूरी जोश खरोश से कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है हम उनको पूरी कर सकें, क्योंकि श्रोताओं, कागज पर उतरी आपकी यह बातें सीधे दिल तक पहुंचती है
0: जी,
1: आपके खतों के माध्यम से। तो श्रोताओं, अब स्टूडियो की घड़ी भी अब इशारा कर रही है और आज के खतों का सिलसिला भी इसी के साथ यहीं थमता है, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहेगा। खत भेजते रहिए और हमें खत लिखते रहिए। और खत लिखने के लिए आइए हम आपको पता बताए देते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: कि खत लिखने के लिए आपको लिखना है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा।
0: हाँ।
1: चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपना नाम और पता अवश्य लिखें और इस कार्यक्रम किसी न सिर्फ इस कार्यक्रम से बल्कि किसी भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो या फिर प्रशंसा, जो भी आपके पास लिखने को हो वो आप हमें जरूर लिख भेजें। आपके खतों का हमें इंतजार रहेगा।
0: संगीता जी, बता दें, ये श्रोता हमारे परिवार है
1: जी,
0: है ना
1: जी, जी।
0: हम उनसे जुड़े हुए हैं और जब तक है हम उनसे जुड़े ही रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस वादे के साथ कि दोबारा मिलेंगे
1: जी,
0: आप सबको मेरा प्यार भरा
1: नमस्कार। तो अब इस कार्यक्रम से हमें, मुझे यानी संगीता और
0: मुझे छवि को इजाजत दीजिए। जोहार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपने लिखा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 7 बजने वाले हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से की वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने की अपील। झारखंड में MMDR संशोधन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने, दोनों दलों ने एक दूसरे पर राज्य के खनिज संसाधनों और हितों को लेकर उठाए सवाल। रांची में आदिवासी एकता महाजुटान में शामिल हुए राज्य भर से आए लोग, अधिकार और सम्मान के मुद्दे उठे, परिसीमन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने पर दिया जोर, कहा गांवों के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में 2 सितंबर तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना। रांची समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आम लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का भी आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: प्रदेश भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने कहा कि खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR संशोधन से खनन व्यवस्था स्पष्ट और मजबूत होगी तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा ने झामुमो पर अवैध खनन को लेकर राजनीति करने और अपने कार्यकाल में खनिज संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया। वहीं झामुमो ने कहा कि झारखंड के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित आदिवासी एकता महाजुटान में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान, सम्मान और जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन को लेकर सरकार की नीतियां और वक्ताओं ने चिंता जताई। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि परिसीमन में आदिवासी समाज के हित और प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहने चाहिए।
2: अगर जनसंख्या को आधार मान करके हमारा संख्या को घटाने का काम किया तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं मित्रों, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप परिसीमन के नाम पर हमारा राजनीतिक अधिकार को घटाकर पांचवी क्षेत्र को और संविधान में जो अधिकार मिला है उसको आप खत्म करना चाहते हो, ये ऐसा होने नहीं देंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर आयोजित 219वें उर्स में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मजार पर चादर पोशी की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल में आई भीषण त्रासदी में लापता रांची निवासी राम प्रसाद घोष के परिजनों से आज मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों से बात कर लापता की खोजबीन और सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी अपने माध्यमों से लापता की खोज करने का प्रयास कर रही है।
3: उनके एक भाई कल काठमांडू गए हैं खोजने, अभी तक कोई पता नहीं लगा है। हम भी एम्बेसी के थ्रू अन्य माध्यमों से पता कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। सब ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि सकुशल लौटें, क्योंकि वो एक साल से काम करने वहां नेपाल गए थे।
0: राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी को प्रभावी विकास की आधारशिला बताया है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं और विकास का लाभ जन जन तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की सक्रिय भूमिका से गाँव में विकास कार्य अधिक पारदर्शी और मजबूत होते हैं। मंत्री ने कहा कि हर नागरिक की आवाज को विकास प्रक्रिया से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी बढ़ाने का जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन वायरल हो रहे उस ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने नागरिकों से ऐसे दावों के झांसे में न आने को कहा है। रांची में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद पलामू जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जामताड़ा जिले के कर्माटार थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वसीम रजा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 10 फर्जी सिम कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं।
4: इनके पास से कुल 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इनका एमओ ये था कि योनो ऐप के नाम पे लोगों को फोन करते थे, फिर उनसे स्क्रीन शेयर करवा के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है लाइक पासवर्ड वगैरह ओटीपी वगैरह उनसे लेते थे और ठगी करते थे।
0: राज्य में 2 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। लोगों को बारिश और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया।
5: संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है, साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में 1 घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से की वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने की अपील। झारखंड में MMDR संशोधन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने। दोनों दलों ने एक दूसरे पर राज्य के खनिज संसाधनों और हितों को लेकर उठाए सवाल। रांची में आदिवासी एकता महाजुटान में शामिल हुए राज्य भर से आए लोग। अधिकार और सम्मान के मुद्दे उठे। परिसीमन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने पर दिया जोर, कहा गांव के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में 2 सितंबर तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना, रांची समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: क्या प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा और तटवर्ती निचले इलाकों में पानी घुस गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है। जिले के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिविरों में पहुंचाने के लिए मोटर जनित नाव एवं पशुओं के लिए चारा इत्यादि का प्रबंध किया गया है। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां पर किसी भी आपात स्थिति की सूचना दिया जा सकता है। जिला उपायुक्त दीपक दुबे ने बताया,
2: सप्लाईज के, टेंट्स के इत्यादि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। टेंडर ऑलरेडी किया जा चुका है, संवेदक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए जिला प्रशासन प्रिपेयर्ड है। गोताखोर हमारे जो लोकल गोताखोर हैं वो ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं और उनको हम डेप्यूट करेंगे। मीनवाइल हमारे दो गोताखोर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, उनके भी हमको सेवा वापस तुरंत मिल जाएगी। तो गोताखोर का हम लोग भी पॉइंट चिन्हित करके डिप्लॉयमेंट कर देंगे। अभी हमने जायजा भी लिया कि हमारा एम्बुलेंस जो है, वाटर एम्बुलेंस जो है, जिसमें कुछ खराबी आ गई थी, वो भी नाव ठीक करा लिया गया है, रेडी है।
1: गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर से जहां निचले इलाकों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर रामपुर, करगिल दियारा, लाल बथानी और महाराजपुर दियारा में भी कटाव जारी है, जहां के लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हैं। साहिबगंज सदर के अनुमंडल पदाधिकारी इन इलाकों का दौरा कर लोगों की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। बोट एम्बुलेंस, एंटी वेनम, आवश्यक दवाइयों तथा राशन की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए शिविरों में शरण लेने की अपील किया।
2: सभी से हम लोग अनुरोध किए कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लोग जिला प्रशासन की ओर से उनके रहने का, खाने का सब व्यवस्था किया हुआ है। तो किसी प्रकार की अगर उन्हें परेशानी होगी तो उसके लिए बताया गया कि आप लोग जिला प्रशासन

0: संपर्क करें, वहाँ के थाना प्रभारी से, सीओ से, एसडीओ से, सभी संपर्क करें और जो कुछ भी समस्या उनके बारे में बताएं, साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी उन्हें बताया गया।
1: बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए संबंधित पंचायतों के सरकारी भवनों में अस्थायी शिविरों में आश्रय बनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरंतर निगरानी किया जा रहा है, साथ ही लोगों के खाने पीना, बच्चों के लिए पाउडर दूध, चूड़ा, गुड़, बिस्कुट इत्यादि सूखे राशन की व्यवस्था हुई है। टीम गठित कर प्रभावित हुए लोगों के स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित किया जा रहा है।
2: गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भ्रमण किया गया और प्रभावित इलाके का दौरा के पश्चात पता चला कि कुछ इलाका जो मखमलपुर लालबथानी में है कटाव हो रहा है। वहाँ के दो चार घर परिवार जल से प्रभावित हो गए जिनका कटाव के तहत बह गया है, तो उन लोगों को वहाँ के स्थानीय पंचायत में आश्रय कराया गया है और वहाँ के लोगों के रहने के लिए और खाने पीने का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए भी मेडिकल डिपार्टमेंट के विभाग से बातचीत हो गई। वहाँ भी
1: आज लघु उद्योग दिवस है। साहिबगंज जिले में भी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित लोग अपना लघु उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बन रहे हैं। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
3: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय संध्या के 7:16 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता को मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे एक बहुत ज़रूरी बात। आज है 30 अगस्त और आज के दिन जन्मे थे हमारे बॉलीवुड के महान गीतकार शैलेंद्र जी। इनका जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था। शैलेंद्र जी के शब्दों में सादगी और गहरा दर्शन एक साथ झलकता था। राज कपूर, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति ने भारतीय सिनेमा को इस संगीत को सुनहरा दौर दिया। उन्होंने आम इंसान के दर्द, उम्मीद और मोहब्बत को बेहद ही सरल भाषा में पिरोया। गीतकार शैलेंद्र जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे गीत हर पीढ़ी को जीवन जीने का सही सलीका सिखाते हैं। आइए, इनकी जयंती पर इनके खूबसूरत गीत के साथ हम इन्हें याद करते हैं। और गीत को सुनाने से पहले देखते हैं कि इस गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश किसने भेजी है। तो इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चायबासा से, और हमें खत लिखा है भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने। पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। जरूर वरुट महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। बड़ी बाजार चायबासा से हमें खत लिखा है मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबिया ने। बड़ा बम्बो गांव सुपाई साई से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गेलिया लोहार से हमें खत लिखा कोमल बेसरा, बसंती, अनु, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला के रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, कुशब्द और राहुल की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म आह का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन है शंकर जयकिशन की। तो श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म आह से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

इस गीत के साथ हम श्रद्धांजलि देंगे हमारे गीतकार शैलेंद्र जी को आकाशवाणी के चायबासा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि हम उन्हें देते हैं। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है बेरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है माहौलिया सोनवा झारखंड से और हमें खत लिखा है नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अन्नु, तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो ने। मेन रोड सोनवा झारखंड के गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान और नीक पानी प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। भाटापाड़ा से हमें खत लिखा है सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेंद्र लहरे ने। गांव ग्राम नवागांव मुढ़ई पार राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम बन बखेरा से राजनंदगांव के योगेश शारवा, श्रीमती आशा शारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि शारवा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म नील कमल से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये की फरमाइश भी फिल्म नील कमल के इस गीत के लिए मिली। मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। सनी इनक्लब मोहाली के बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। बुढ़ाना इस्लामपुर से हमें खत लिखा है शहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और बड़सिंगी बुल्ढाना से अमोल मानकर, सुभताई मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। पुरानी भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, सहनबाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म नील कमल से।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाए। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस जरूरी संदेश के साथ ही श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम आपकी पसंद से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो इस कार्यक्रम से अब हमें विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के तहत भारत और दोस्तों के बीच खेलने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। तो आइए इस मैच के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में भाई देखिए, जिन किसान भाइयों ने ज्वार आदि चारे की फसल लगा रखी है उसकी कटाई कर लें, साथ ही यदि खेत खाली और भाई सूरजमुखी की फसल लगाना चाहते हैं तो इसमें देरी ना करें,

0: उनको सेमीफाइनल फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। रिसेंटली भी जब इंग्लैंड में थे वहां पे भी उनको इंजरी हुई, लेकिन अब जिस तरीके से उनको एशिया कप के लिए बुलाया गया, स्पेशली T20 के लिए, कहा जाता है कि काफी टाइम हुआ है उनको इस T20 फॉर्मेट में खेले हुए, और पिछला WPL भी उनको इंजरी की वजह से मिस हुआ था। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ये भरोसा देखना चाहते हैं कि नंबर 3 पे अगर जमीमा इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अगर टेक्निकली बोले, बहुत साउंड क्रिकेटर है प्रतिका रावल, और हम सभी ये देखना चाहेंगे कि एक प्रतिभाशाली जो क्रिकेटर है वो हर किसी फॉर्मेट के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अब प्रतिका रावल की बारी है कि आज उनको ये बेहतर मौका मिलने वाला है, आज पहली बार वो T20 में आ रही हैं, किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। और भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है ये एशिया कप, क्योंकि लास्ट कुछ समय से जो T20 का जो सफर रहा है भारतीय टीम का, वो मैं ये कहूंगी कि 50-50 रहा है। तो यहाँ पर हरमनप्रीत की जो फौज है वो ये कोशिश जरूर करेगी कि एशिया कप से वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम फॉर्मेट्स खेल रहे हैं T20s में, वहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात है, अगर दुबई की बात करें तो स्पिनर्स को कितना सपोर्ट यहां पर मिलेगा, बिकॉज उनका एक्शन भी काफी कमाल का रहना चाहिए आज की शाम।
2: देखिए, काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। कुछ जो कोच हैं अमोल मजुमदार, उन्होंने बोला भी है कल कि स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे रही है, तो इसीलिए दोनों टीमों में जो है स्पिनर्स की भरमार है वैसे भी, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, तो दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास। लेकिन यह है कि बात के हमारी टीम क्लिक नहीं कर रही। एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी BCCI की, कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 15 दिन का कैंप लगाया गया। उस कैंप में जो हमारी वीकनेसेस थी, जो वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आई कि जिसमें हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी खराब थी, उस पर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश की गई है। खेल हम भले ही एशिया कप में रहे हैं, लेकिन जो हमारी निगाहें हैं ना, वो

दो साल आगे तक के लिए गई हुई हैं, क्योंकि T20 के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने हैं, एशिया कप होगा, उसके बाद एशियन गेम्स होने हैं सितंबर में, उसमें T20 फॉर्मेट होना है, फिर T20 के चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2027 की शुरुआत में, उसके बाद ओलंपिक्स होना है 2028 में लॉस एंजलिस का, वो भी T20 होगा, और उसके बाद भी T20 का वर्ल्ड कप भी होना है 2028 में। तो निगाहें हमारी आगे के टूर्नामेंट में है, प्रतीका रावल को टीम में रखना तो वो थोड़ी सी जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से, लेकिन खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा, मौके मिलेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारे 16 खिलाड़ियों को आजमाया गया था, तो यहाँ भी मैक्सिमम खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे, और अगर थाईलैंड के खिलाफ आप किसी नई खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे। तो एक अच्छा डिसीजन, खिलाड़ियों को यहाँ मौके दिए जाएंगे, इस टूर्नामेंट को जीतना हम

कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट होती है उतनी तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होती, चाहे वो मेंस क्रिकेट की बात करें चाहे वुमेन्स क्रिकेट की बात करें। और वुमेन्स क्रिकेट

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म छोटी सी बात से, आवाजें यशोदास और आशा भोसले की। गीत के बोल योगेश के और संगीत सलिल चौधरी का।

हवा महल में आज हास्य नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका उलाहना।

0: कमबख्त ने साथ छोड़ दिया, मैं भी तो सुनूं। अरे वो कौन करम जली है? हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए।
1: अरे करम तुम्हारे नहीं रंजना मैडम, करम तो मेरे फूटे हैं, तुम जैसी
0: चुड़ैल पाकर। अरे जब मुफ्त में दूध उड़ाने को मिल रहा है तो खूंटे पर गाय क्यों बांध रही?
1: अरे गाय, वो भी मरखनी, आगे से सींगे मारे
0: और पीछे से दुलत्ती झाड़े, क्यों है ना?
1: ओहो, तुम तो यार झाड़ू लेकर पीछे पड़ गई। अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था, अब तुम जैसी सीधी सरल सरपट सरसराती
0: थोड़ी ना मिली होती।
1: ओहो, सुना नहीं, खूबसूरत गाय मुझको ना मिली होती तो भला ये इतने खूबसूरत बछड़े कहाँ से आते?
2: पापा, गाय के बजाय आप भैंस क्यों नहीं लाए? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है।
0: क्या कहा? वो मीठू तेरे का? ये मुझको मुझको भैंस कहता है?
2: मेरा कान छोड़िए, मैं तो पापा की बात कह रहा हूँ, वही तो आपको गाय बना रहे थे।
0: हाँ हाँ, तुम बाप बेटे मुझको गाय बनाओ, भैंस बनाओ
2: और चाहे बकरी बनाओ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।
0: बस आपकी इन्हीं बातों से लड़के बिगड़ रहे हैं, ये सब आपकी शय पाकर शेर हो रहे हैं। अभी परसों ही रीना की माँ बबलू की और इंजीनियर साहब की बीवी बंटी की शिकायत लेकर आई थी।
1: अरे भाई क्या शिकायत लेकर आई थी, जरा मैं भी तो सुनूं।
0: शिकायत क्या? बंटी ने रीना का बछड़ा खूंटे से खोल दिया और वो सारा दूध पी गया।
1: देखो रंजना, अब फिर तुम्हारी तरफ से गाय का नाम आया है।
2: तो पापा, अब मैं भैंस का नाम लूं?
0: अभी बताती हूँ तुझको, अभी बताती हूँ, तेरी जबान हाथ भर की हो रही है।
2: पापा, क्या किसी की जबान हाथ भर की भी होती है?
0: चल भाग यहाँ से।

0: किसने मारा तुमको सोमू?
1: असल बंटी ने मारा।
0: क्यों, क्या बात हो गई थी?
1: बंटी ने मेरी मम्मी को बंदरिया कहा था।
2: पापा पापा ये झूठ बोल रहा है।
1: अच्छा,
2: ये कह रहा था कि ये जो बंदरिया नाच रही है ना, ये मेरी मम्मी है।
0: अरे
1: अच्छा, मैंने ये कहा था तुमने ये कहा था।
2: चल जा, झूठे कहेंगे।
1: तुम झूठ बोल रहे हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपस में लड़ते नहीं है, बुरी बात है। जाओ बेटा जाओ। हाँ।

0: कोयल साहे रंग तुम्हारा गर्दन ज्यो मजनू कचकारा तुझे देखकर ए बेडंगी ऐसा लगता है। अरे अब मैं तुमको थोड़े ही कह रहा था, मैं तो
1: हाँ हाँ दीवारों को कह रहा था, तुम्हारी इन्हीं बातों को सीखकर लड़के बिगड़ रहे हैं।
0: चलो भाई ठीक है, हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं, तुम कुछ ऐसी वजह पैदा करो जिससे लड़के सुधर सके। कोयल साहे रंग तुम्हारा गर्दन ज्यो मजनू कचकारा।

0: ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो?
1: पापा, बंटी ने मुझे बिजली की तार से मारा।
0: क्यों बंटी, ये दिन भर लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो?
2: बड़े पापा बनकर आए हैं अपने बेटे का पक्ष लेने। जैसे सोमू बड़ा सीधा है, बेचारा कुछ नहीं जानता। पहले अपने लड़के को समझाइए, फिर मुझे कहिएगा।
0: खामोश, जरा सा है, इतनी सपासप जवान चलती है जैसे कतरनी।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए।
0: अच्छा देखो, मैं तुझे बताता हूँ, कान उखाड़ कर उमेट कर रख देता हूँ हाथ में।

0: क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहा है, क्या बात हुई?
1: मुझको सोमू के पापा ने चार चार चाटे मारे, मुझको मारा है।
0: क्या? लेकिन बेटा बात क्या हुई? अच्छा ठहरो, मैं अभी चलता हूँ। अरे शर्म नहीं आती इतनी छोटे बच्चे को मारते हुए? अरे उलझना है तो किसी बराबर वाले से उलझे, तब समझ में आए। दो मिनट में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। छोटे बच्चे को मारना कौन सी बहादुरी काम है? दिन में सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। आओ चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ।
2: हाँ हाँ अब तो देखोगे ही, अपने लाडले को कुछ कहोगे नहीं, उसको उल्टी सीधी बातें सिखाकर शेर बनाओगे, और अब चले हो मोहल्ले में दूसरों से उलझने।
0: देखो रंजना, तुम हर बात पे अपनी टांग मत फसाया करो, हर वक्त कबाब में हड्डी मत बना करो, हर चीज में अपनी छिरीमुख को मत घुसेड़ा करो।
2: अरे मेरी समझ में नहीं आता, कैसे पिता हो तुम?
0: खैर तुम अपना काम करो, मैं तुमसे इस समय बहस नहीं करना चाहता।

0: कौन है?
1: मैं हूं जनाब। मिस्टर, आपका ही नाम राजन है?
0: आइए आइए, कहिए क्या बात है। मेरा ही नाम राजन है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
1: ओ, ये नाम तो मेरे ससुर का भी है।
0: और हुजूर आपकी तारीफ?
1: अजी, मुझको अशोक कहते हैं।
0: ओ, ये नाम तो मेरे साले का है।
1: अच्छा, तो आप मुझको अपना साला बना रहे हैं?
0: ओ, और आप मुझे अपना ससुर बना रहे हैं?
1: जी हाँ, हर बात की पहल तो हमारी तरफ से होती है। हर चीज की पहल मैं और मेरा लड़का ही करता है। बस दुनिया में यदि कोई नया प्राणी है तो वो है आप और आपका लाडला।
0: आइए आइए, अंदर निकल आइए, जरा मिजाज को ठंडा कीजिए, चढ़े हुए पारे की डिग्री थोड़ा नीचे तो उतारिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं।
1: हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा पारा चढ़ गया है, मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ, बिना मतलब भूखने और काटने लगा हूँ। एक आप ही इस कॉलोनी में भले और शरीफ आदमी है।
0: भाई साहब, आप तो औरतों की तरह झगड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, मुझको औरत बनाइए, झगड़ालू बनाइए, अरे बनाना है साला बनाइए, चाहे जो मर्जी आप बनाइए।
0: मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप खुद में खुद अपने मुंह से बनते जा रहे हैं।
1: जी हाँ, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। खैर, और बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने बच्चे को मारा क्यों? आज आपसे मुझको इस बात का निपटारा करना है। आप अपने को समझते क्या हैं? इंजीनियर होंगे तो आप अपने घर के होंगे, और पैसे वाले होंगे तो अपने घर के होंगे, रिश्वती ये कहीं के।
0: मिस्टर अशोक, जबान को लगाम दीजिए, होश में रहिए, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जबान को लगाम नहीं, जो चाहा बक डाला, दो मिनट में आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इतनी देर से टालता चला जा रहा हूं और आप हैं कि भीगे बांध जैसे ऐंठते ही जा रहे हैं, मुझको अपना ससुर, रिश्वतिया और न जाने क्या क्या बना डाला। आपसे अधिक समझदार तो मुझको आपकी पत्नी मालूम होती है। बच्चों के इन छोटे छोटे झगड़ों में औरतों को लड़ना चाहिए, पर मैं देख रहा हूं वे बेचारी मुफ्त में बदनाम है और आप इनकी भी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। इस सड़ियल झगड़े को लेकर तिल का ताड़ बनाते जा रहे हैं।
1: तो इसका मतलब आप मेरी बीवी तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं? खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा
0: तो मैंने कौन सा आप शब्द कह दिए उनको?
1: जी आप कौन होते हैं मेरी बीवी के गुण अवगुण बखान करने वाले?
0: अरे बेहतर होता कि आपकी पत्नी आपकी मिसेज होने के बजाय आपकी माँ होती।
1: क्या क्या क्या कहा आपने? मेरी बीवी मेरी माँ होती? मालूम होता है आपका दिमाग खराब हो गया है।
0: अरे दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हुआ है, कम से कम आपकी पत्नी आपकी माँ होती तो कुछ तो अच्छे गुण आ गए होते।
1: मैं पूछता हूँ कि आपको अभी इस मोहल्ले में आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए हैं और आपने मेरी पत्नी के विषय में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली, मुझे आप अच्छे आदमी नजर नहीं आते।
2: अरे मैं कहती हूँ चलिए घर वापस चलिए।
1: अरे छोड़ो यार,
2: दे चुके उलाहना, हो गया बस हो गया।
1: मैं पूछता हूँ तुम यहाँ कैसे आई?
2: क्यों, मेरे यहाँ आने से कौन सा आकाश फट गया, क्या गजब हो गया?
1: नहीं रंजना, नहीं, तुम नहीं जानती मुझे मिस्टर राजन अच्छे आदमी नहीं लगते।
2: समझी, तो अब लड़का छोड़कर मुझ पर प्यास कटने लगा। आइए चलिए घर वापस चलिए।
0: आइए भाभी जी, अंदर आकर बैठिए ना।
2: अरे नहीं भाई साहब, ठीक है अब चलिए चलिए।
3: अरे आइए भी, ऐसे भी क्या नाराजगी है। अशोक भैया आप भी बैठिए ना।
1: बस रहने दीजिए भाभी जी।
3: अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए फिर इतना बिगड़िए। देखिए दिन भर ये बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनसे नुकसान भी हो जाता है। आज बात की बात पर मुझे बात कहनी पड़ रही है। उस दिन सोमू और बंटी लकड़ी की गेंद से छत पर खेल रहे थे, मेरे सामने ही बंटी के गेंद फेंकने पर मेरा 2 किलो का मर्तमान तर से टूट गया, सारा आचार बिखर गया। पर क्या मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आई? अरे बंटी के बजाय सोमू की गेंद से भी तो अचारदानी टूट सकती थी, लेकिन छोटे बच्चों को बड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए।
1: क्या मुंह लगा था बंटी आपके मिस्टर राजन के?
3: अरे भैया पहले बंटी ने सोमू को बिजली के तार से मारा, देखिए देखिए उसके बदन में कैसे नीले नीले निशान पड़ गए हैं, फिर उनके डांटे पर तड़ातड़ जबान लड़ाने लगा, इनको मुंह चढ़ाने लगा, इस पर इन्होंने उसको 2-3 चांटे लगा दिए। अरे इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बंटी आपके साथ साथ मेरा भी तो बच्चा है, मैं तो बंटी और सोमू में कोई भेद नहीं समझती। अगर मेरा सोमू ऐसा करे तो फौरन उसके कान गरम कर दीजिए, मुझे जरा भी एतराज ना होगा।
4: बहन यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, बच्चों की गलती पर कोई भी बड़ा बूढ़ा उनको अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए यदि डांटता डपटता है तो इसमें माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उलाना नहीं देना चाहिए। और बहन हम लोगों के बचपन में तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बूढ़े के सामने हम लोग जबान ही नहीं खोल सकते थे, और गलती करने पर अपने से बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे के फौरन कान गरम कर देता था। और क्या मजाल कि माँ बाप उस व्यक्ति के पास बच्चे के संबंध में उलाना लेकर जाएं।
3: लेकिन बहन, अब तो जरा जरा सी बात पर सिर फुटावल शुरू हो जाती है।
4: यही बात तो मैं इनसे बराबर समझाती हूँ कि बच्चे खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी और गलती भी करेंगे। इस पर अगर कोई डांट फटकार कर देता है, मार भी देता है, तो क्या हुआ? ये सब तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है।
0: कहिए मिस्टर अशोक, मैंने क्या गलत कहा था कि भाभी जी को आपकी पत्नी होने के बजाय आपकी माँ होना चाहिए?
1: जी नहीं, आपकी।
0: जी नहीं, आपकी।
1: आपकी,
0: आपकी,
1: आपकी, आपकी, आपकी।

उलाहना, ये हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र के।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग।
0: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए।

0: तक बढ़ाया यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन
1: के खतरों के प्रति आगाह किया महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1.5 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी की और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने अब समाचार विस्तार से भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है दोनों देशों ने आज खनन आयुर्वेद पर्यटन आर्थिक और वित्तीय संवाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे हमारा मानना है कि टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे
2: दोनों देशों के युवाओं विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है श्री मोदी ने सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे यह

0: संगठन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 crore के आसपास था। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। तो आइए इस क्रिकेट मैच के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज़ देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल एन शेखर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाह तिरुपति की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो, आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार, शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

0: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।
1: हो हो हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: दीवाना।
1: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
0: सब कुछ सीख

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: बदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
1: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: हाय हाय,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

फिर क्यों जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन जल

0: अरे जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार की आग में। तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी चाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
0: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

0: दो दो रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत।
1: प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले, हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: मरना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
0: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: न जाने क्यों ऐसा लगता है कहीं से यादों की बदलियां उमड़ घुमड़ आए तो शायद थोड़ी सी राहत मिले।
0: क्या बात कही आपने मनीषा जी, स्मृतियों के बादल जब आते हैं तो बादलों का आगमन बारिश हो ना हो छाया तो लेकर के आता है।
1: जी हाँ,
0: और इस छाया में जो ठंडक मिलने वाली है, उस ठंडक से जिनकी याद हमें आएगी, उसकी झलक इस गीत से
1: हाँ
0: मिल
1: थोड़ी सी मिलेगी। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आज की विविधा में हम किन कलाकारों का स्मरण कर रहे हैं।

0: मेला फिल्म के इस गीत की झलक से तो बहुत से हमारे सुधी श्रोताओं ने जान लिया है, पहचान लिया है बात किसकी होने वाली है। फिल्म जगत के महान संगीतकार नौशाद अली साहब का स्मृति दिवस है 5 मई।
1: तो श्रोताओ, आज आप समझ गए कि विविधा बहुत ही सुरीली होने वाली है, क्योंकि नाम ही सबसे पहले जो है वो महान संगीतकार नौशाद साहब का है, और उनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को हम आज सुनवाने वाले हैं। जयंत जी,
0: जी मनीषा जी, नौशाद अली साहब के बारे में अपने श्रोताओं को, बहुत से श्रोता जानते भी होंगे हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ये जानकारी कई बार हमने उन्हें दी है।
1: जी जी जी
0: आज फिर उसे दोहराते हैं कि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1919 को।
1: जी हाँ।
0: अब लखनऊ शहर के बारे में क्या कहें,
1: तहजीब का शहर है।
0: जी, और उस शहर में जिनका जन्म हुआ हो, लालन पालन हुआ हो, उस शख्सियत के बारे में क्या कहे कि वो तहजीब तो उनमें अपने आप ही उतर आती है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नौशाद अली साहब के बारे में एक बात तो सभी जो सिने संगीत प्रेमी हैं और जिन्हें शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि है, वो जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का बहुत सुंदर प्रयोग राग रागिनियों का नौशाद साहब ने अपने संगीत में किया। इसके अलावा लोक गीतों का भी बहुत सुंदर
0: बहुत
1: प्रयोग,
0: अच्छी तरह से प्रयोग उन्होंने
1: जी,
0: किया।
1: जी, जी
0: जी
1: जी। और इसके अलावा नौशाद साहब के बारे में और भी कुछ जानकारी जयंत जी
0: जी बचपन में उनमें बताया जाता है कि वो अपने लखनऊ के पास बाराबंकी जो शहर है वहाँ कव्वालियों के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो जो भी संगीत के जलसे होते थे उसमें ये एक श्रोता के रूप में शरीक हुआ करते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे, तो अपने आप जो है उनके संगीत के संस्कार उन पर होते चले।
1: जी हाँ। और नौशाद साहब का ये जो संगीत का प्रेम है, ये फिर बाद में हमें पता चलता है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और उनकी सुपरहिट फिल्में आनी शुरू हो जाती हैं। उनकी शुरुआत होती है 1940 में,
0: प्रेम नगर फिल्म का नाम था, और इस फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि जो गाने सबसे पहले हिट हुए वो 1944 की फिल्म के गाने थे, रतन।
1: जी हाँ। और फिल्म रतन से ही फिल्म इंडस्ट्री को एक जगमगाता हुआ रत्न मिला नौशाद अली। श्रोताओ, नौशाद साहब को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया, और हम आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी एक खास रिकॉर्डिंग के कुछ संपादित अंश आपको सुनवा कर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाए पहले। जयंत जी,
0: जी नौशाद साहब से बातचीत की है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर और हमारे सेवानिवृत्त उद्घोषक अहमद वसी साहब।
2: याद है अब तक वो बचपन का जमाना, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानी मैं 10 बरस का था तकरीबन, उस वक्त से ये म्यूजिक का, संगीत का, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से जिनको अताई कहते हैं, पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़, एक जबान में कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज। तो मेरे घर में माहौल जो था वो सब सूफी कस्म के हजरात थे, हमारे वालिद, दादा और दादी, नानी, सब इन्हें वो पुराने ख्यालात के, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ पुराने ख्यालात, चूंकि पुरानी राहों से नई राहें फूटती हैं, तो मैं उनकी बातों को आज तक याद रखता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले मुखालिफ थे मौसीकी की तरफ, जो मेरा रुझान था, क्यों था ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो काबिल जिक्र है, हाजी बारस अली साहब, बाराबंकी के आगे यूपी में एक जगह है जिसका नाम देवा शरीफ, वहाँ हाजी बारस अली साहब की दरगाह है, और हर साल वहाँ कार्तिक के महीने में उर्स होता है, और बहुत बड़ा उर्स होता है, 10 दिन का वो उर्स होता है। तो लखनऊ से लोग अपना अपना तंबू, अपनी अपनी कनाते लेके जाया करते थे, वहाँ मैदान में डाल के रहते थे 10 दिन तक, और थिएटर कंपनी भी वहाँ आती थी, तो हम भी मामू के साथ जाया करते थे। तो हम भी छोटे थे, मेरे ख्याल से 10 साल के, तो उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो सब मेले में जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं उनमें एक बांसुरी वाला आता था, वो बांसुरी बजाया करता था, बेचता था बांसुरी, और वो बांसुरी उसकी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा राग बजा रहा है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छी लगती थी उसकी बांसुरी, और हम फुटपाथ पर जाके उकड़ू बैठे हुए उसकी बांसुरी सुना करते थे। एक नूरानी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधे रहता था, काली वास्कोट, शरई पैजामा, उसकी जहां बांसुरी की आवाज में सुनूं और अपने कनात में से तंबू में से भागूं मैं और खाना पीना कुछ सब भूल जाऊं मैं, बैठा हुआ उसके दुकान के सामने फुटपाथ पर सुना करता था।

तो साहब दरगाह शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल आते थे, बड़े अच्छे अच्छे गजल के गायक आते थे। एक बाबा नसीर खां आया करते थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, और वो ख़ास तौर से गजल गाते थे, और उनकी गजल बड़ी मशहूर थी जो कि बच्चा बच्चा उसको दोहराता था। छुटे असीर तो बदला हुआ जमाना था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था, हमारी कैद व कफस को बस एक साल हुआ, यही बाहर के दिन थे यही जमाना था। तुझे मैं बागवा क्या क्या निशान बतलाऊं, यहीं कहीं पे हमारा भी आशियाना था। इस कस्म की वो गजल थी, किसकी कही हुई थी या मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बाबा नसीर खां ये गजल ऐसे गाते थे, इस तरह गाते थे कि लोग वाह वाह के नारे लगते थे और झूम झूम जाते थे लोग। बहरहाल वो बांसुरी ऐसी जहन में गूंजी कि वहाँ से हमको मौसीकी का शौक शुरू हुआ, वहाँ से मौसीकी की इब्तिदा होती है। धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ती गई, एक दो साल और गुजरे, अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरुस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है? तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद। पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, वैसे अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर। तो कहने कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान, और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो एक रोज उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आंख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने अच्छा, तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करना नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आँखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा हुजूर वो रॉयल सिनेमा मैं जाता हूँ, मैं लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सजा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सजा के लिए। अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूंगा। नहीं सजा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा जी नहीं। आपकी सजा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा, और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, और लड्डन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

0: kamare tanda jobade na aa
1: फिर एक रोज उस्ताद ने टंडन साहब को बुलाया, गुरबद अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा ये बच्चा तुम्हारी नकल करता है लेकिन हूबहू मेरे ख्याल से नकल करता है, सुनो एक दफे इसको। अरे बेटा इधर आ, जरा सुना क्या बजाता था तू? तो मैंने डरते डरते लंडन साहब के सामने सुनाया, तो लंडन साहब ने पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, भाई तेरा जहन बहुत अच्छा, तू आया कर वहां। मैंने कहा जी आता हूँ, मैं चार आने का टिकट लेके। नहीं तुमको टिकट नहीं लेना
2: पड़ेगा, लेने की नहीं जरूरत।
1: तो अब हमको फ्री एंट्री हो गई। अब दोनों शो तक हम वहाँ ठहरे। अब वालिद को मालूम हुआ कि ये रोज लेट आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो कल से अगर तुम 9 बजे के अंदर घर नहीं आए तो कुंजी नहीं खुलेगी, दरवाजा बंद हो जाएगा।
2: तो यूँ कहिए कि वालिद को छोड़ के सारे घर वाले जो थे आपकी इस
1: वालदा, यकीनन माँ फिर माँ होती है। वालिद बहुत सख्त मिजाज थे इस सिलसिले में, और वो हाई कोर्ट का जज था उस जमाने में, ब्रिटिश का टाइम था, तो वो हाई कोर्ट के जज के साथ वो मुंशी थे
2: जी।
1: एक रोज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बेवक्त वालिद साहब आ गए घर में, और वही वक्त था मेरे रियाज का। उस वक्त मैं पकड़ा गया और वालिद साहब कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा सब घर में, गाना बजाना बजाय रोजा नमाज के, ये कौन लाया ये? तो मैं चुपे हाथ बांध के खड़ा हो गया, क्यों? मैंने कहाँ से लाए हो? मैंने कहा हुजूर वो उस्ताद गुरबत अली साहब ने मुझे तोहफतन दिया है। ये तोहफन ने किस बात पर दिया? तुम्हें क्या खूबी थी, किस लिए दिया? मैंने कहा मैं कुछ ये बजा रहा था उनकी दुकान पर, उन्होंने खुश होके मुझे, ये नहीं रहेगा यहाँ, ये बाजन अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम्हें भी निकाल दूंगा, लाओ इधर लाओ। बाजा ऊपर लेके उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। अब साहब मैं बहुत मायूस हो गया, गुरबत अली साहब की दुकान पर फिर आया मैं, और मैं वहाँ खड़ा हो गया, और वो कहा अरे बेटा आओ आओ, क्या हुआ? तो मैं रोने लगा, अरे बताओ हुआ क्या? तो मैंने उनको वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और हमारे वालिद साहब ने आज बाजा फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या करूँ। उस्ताद ने दिलासा दिया, कहने लंडन साहब के पास तो तुम जाते हो वहाँ रॉयल सिनेमा में? मैंने कहा जी हाँ। फिर कहने अच्छा देखो उस्ताद बब्बन साहब एक रहते हैं नवाब बब्बन साहब, बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारा सामना कराऊंगा। ये अच्छे थे नवाब खानदान के, और उनकी कोठी थी लाठर रोड पर, अभी भी है।
2: अच्छा।
1: उन्होंने कहा भाई ये लड़के को बब्बन साहब थोड़ा सबक दो, कुछ सुना बेटा? तो मैंने कुछ डरते डरते सुनाया, उन्होंने भी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा तेरा जहन अच्छा, आना मेरे पास मैं तालीम दूंगा। तो साहब उस्ताद लंडन साहब बच्चों की तरह मानते थे हमको। अब हम रोज वहां जा रहे हैं और चोरी छुपे सीख

0: और नवाब बब्बन साहब से भी, और एक क्लब था वहाँ नादन महल रोड पर जो एम्यूचर्स का क्लब था, जिसमें हर साल एक ड्रामा स्टेज होता था और उसमें तकरीबन सब वकील लोग शामिल होते थे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। तो वो स्टेज हुआ ड्रामा, मैं उसमें बजा रहा हूँ। अब वो साहब खबर फैल गई, हमारे वालिद साहब को पता लगा। अच्छा, उस वक्त उम्र मेरी 16-17 साल की हो गई थी, तो हमारे वालिद साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि देखो आज एक बात का फैसला करो, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने वो शौक छोड़ा नहीं और हमें बाहर से खबर मिली, आज फैसला करो तुम्हें ये म्यूजिक चाहिए या घर चाहिए। हमारी वालदा कहने लगी सुबह बात कर लेना, अभी रात है फिर। नहीं नहीं, अच्छा इत्तेफाक से दिवाली की रात थी, दिवाली थी तो हर तरफ चिरागा वगैरह हो रहा था। अब मुझसे कहने अभी फैसला होगा, इसी वक्त होगा, तुमको मौसीकी चाहिए या घर चाहिए। मैंने कहा
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के तहत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:18 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम फिर से आपकी सेवा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। शिवरात्रि, जय हिंद।